आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, 101.FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 6:05 हो रहे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।
4: संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरितमानस गान भाग 231। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हम है राही

प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। आठ बजकर 15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:30 पर। नौ बजकर 30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इलैया राजा पर। दस बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे से। 12 बजे कार्यक्रम यादों की महफिल। दिन में 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां भी। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 2:15 पर, ये पुनर्प्रसारण होगा। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे। फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी सुनिएगा उन दिनों की बात है, लेखक अरुण शेखर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम शाम 5 बजे ये पुनर्प्रसारण होगा। वैसे आप सुनते हैं 10:00 कार्यक्रम छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाओ बीवी का, लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

कुछ होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच

तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 231, प्रसंग था अयोध्या कांड।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है पंडित एसएल कंडारा जी का, तबला संगीतकार।

0: श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी, आज राग रागेश्री की बारी है।
1: अच्छा,
0: रागेश्री की चर्चा में इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप, इसका आरोह अवरोह और इसकी खूबसूरती?
1: जी, रागेश्री एक बहुत ही मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी गणना होती है, छोटे रागों में भी। छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है।
0: जी जी,
1: जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग पे।
0: जी,
1: क्लासिकल म्यूजिक में राग रागेश्री के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूपक में सुनाता हूँ।

इसमें गंधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम बहुत अल्प, फिर धैवत शुद्ध, निखात कोमल और फिर सात आर सप्तक का, ये आरोह हुआ इसका। अवरोह ऐसा है तार सप्तक का सा, फिर कोमल निषाद, फिर धैवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है कभी कभी, ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम, गंधार और ऋखभ। और इसका जो मूल चलन है इसमें

0: क्या बात है पंडित जी, इस सुंदर सी बंदिश को सुनने के बाद रागेश्री राग पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नदा की आवाज में है।
1: अरे बहुत सुंदर गीत है वो।
0: जी, फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया।
1: जी जी, कौन आया
0: मेरे मन के द्वार।
1: मन के,
0: आइए सुनते हैं।

0: देख कबीरा रोया। इस फिल्म से रागेश्वरी राग पर आधारित गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। मन्ना डे की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हसरत जयपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी अनाड़ी।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: बाप बेटे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। लिखा था इसे भरत व्यास ने, धुन बनाई थी कल्याण जी वीर जी शाह ने। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद।

0: 12 o'clock. इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में. शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर.
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है. उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके.
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी.
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है. गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं.
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले.
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है.
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य

0: कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हो तो अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो ऐसा उत्पादन ही नहीं दे रहा, तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,

0: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कुछ लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: मीडियम वेव चार्ट
1: 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश।
2: को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: कार्यक्रम की पहली भजन सुनिए सोनू निगम की आवाज में।

0: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल करें 94532 21909।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
4: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
7: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। कार्यक्रम की अगली भजन सुनिए हरिओम शरण की आवाज में।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन, और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में

बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500 रुपए शुल्क देना होगा।

0: विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: अवधूत गुप्त की आवाज में सुनिए कार्यक्रम की पहली गजल।

0: वादली बदर्स की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गजल।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। 8:30 हो रहे हैं। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्ते। दोस्तों, आज हम एक महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए। जी हाँ दोस्तों, आज है महान समाज सुधारक छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती। छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। वह कोल्हापुर रियासत के शासक थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक के रूप में है। उन्होंने समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है।

के लिए उन्होंने गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए छात्रावास, विद्यालय तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की। शाहू जी महाराज ने वर्ष 1902 में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक असमानता का खुलकर विरोध किया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब सभी को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। महान समाज सुधारक छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि नेतृत्व का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना भी है। श्रोताओं, आज उनकी जयंती पर आइए हम संकल्प लें कि शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे तथा एक समरस और समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ हम छत्रपति शाहू जी महाराज को शत शत नमन करते हैं। और दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: दोस्तों, सामाजिक न्याय, शिक्षा और अवसरों की समानता के जिन आदर्शों को शाहू जी महाराज ने अपने जीवन में स्थापित किया, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए अब समय है युवाओं की शक्ति और क्षमता का विचार करने का। तो आइए अब सुनते हैं नए भारत के रोजगार सृजन में युवाओं की भागीदारी विषय पर प्रफुल्ल गुप्ता जी से भेंटवार्ता, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार देश के युवा नवाचार, उद्यमिता, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपसे बातचीत की है आलोक गुप्ता ने, तो आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं, आज हमारे बीच में प्रफुल्ल गुप्ता जी हैं, आप विज्ञान प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो आपका हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ आज हमने जो विषय लिया है, नए भारत के रोजगार सृजन में युवाओं की भागीदारी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नए भारत के रोजगार में जो युवा हैं वो किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताना चाहूंगा कि नए भारत के रोजगार में युवाओं की भूमिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संभावनाओं से परिपूर्ण और चर्चा का विषय है। जब भी हम नए भारत के रोजगार और उसमें भी युवाओं की भूमिका की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितनी ही चर्चा करूं। भारत के युवाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पटल पर अपनी प्रतिभाओं से हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। ऐसे न जाने कितने क्षेत्र हैं जिसमें भारतीय युवाओं ने प्रतिभाओं से विश्व में नाम के साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर खोलते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन स्टार्टअप्स में तमाम ऐसी एजुकेशनल कंपनीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध करा के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं, जिससे विद्यार्थी शिक्षित होकर के रोजगार परक बन रहे हैं। नए भारत के रोजगार में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जरिए युवाओं को हिम्मत और सहयोग मिलता जा रहा है, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जरिए युवा अपनी फर्म और कंपनी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। मुद्रा की आवश्यकता होने पर सरकार सहज मुद्रा लोन की सुविधा भी दे रही है। युवाओं के रोजगार में सरकार की नीति एवं योजनाओं की बहुत अहम भूमिका है। इसी तरह से हाल ही में हुए एक स्टार्टअप्स की बात करना चाहूंगा, जिसमें अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में है और वह कश्मीर में 2-3 दिनों के लिए रहना चाहता है, तो वह व्यक्ति कन्याकुमारी में रहते हुए कश्मीर में भ्रमण संबंधी सभी सुविधाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बुक कर सकता है।
2: हम समझते हैं कि आज टेक्नोलॉजी बदल रही है और ये बात आप बता रहे हैं हमारे श्रोताओं को। निश्चित है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उसी परिवर्तन के नियम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नए भारत के रोजगार में स्टार्टअप के नजरिए से अगर युवाओं की भूमिका की हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, युवाओं ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि कठिन से कठिन कार्य बहुत ही कम समय में आसानी से हो जाते हैं। साथ ही आज अगर स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2016 में 500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स थे, परंतु आज 2025 तक भारत में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 1,60,000 के लगभग स्टार्टअप्स हैं। और यह महज सिर्फ आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के युवाओं के जुनून, कल्पना शक्ति, कुशलता और मेहनत को दर्शाता है। इसी क्रम में रोजगार की बात करें तो लगभग 1,60,000 स्टार्टअप्स के जरिए लगभग 16,00,000 रोजगार प्रत्यक्ष रूप से सृजित हुए हैं। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर में रोजगार का सृजन हुआ है, जैसे IT सेवाओं, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, कृषि, अन्य क्षेत्रों में लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन हुआ।

0: हुआ है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है।
1: बात आती है आगे बढ़ने की, अपने देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की, तो ये जो युवा हैं यही उसका सबसे बड़ा माध्यम है। अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो युवाओं की जो मानसिकता है वो कैसे बदल रही है?
0: आज भारत का युवा नौकरी को सिर्फ खोजने वाला ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन चुका है, और यह सिर्फ शहरों में ही नहीं गाँवों में भी युवाओं का योगदान कम नहीं है। स्मार्ट खेती, तकनीक, सोलर ऊर्जा एवं कृषि आधारित स्टार्टअप्स के माध्यम से ग्रामीण युवा भी रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं। यह संकेत है कि नया भारत सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं बल्कि गांवों से भी नई उम्मीदों के साथ अपना परचम लहरा रहा है। सफलता की इसी कड़ी में आज मैं आपको दक्षिण भारत के दो सबसे अहम स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहूंगा। चेन्नई से उठी कंपनी जिसने भारत को दुनिया के सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नक्शे पर चमकाया है, ग्रीस और शान कृष्णमूर्ति, ये दो नाम भारत की नामचीन शख्सियत हैं जो दोनों दक्षिण भारत के साधारण परिवारों से संबंधित हैं। ग्रीस ने ग्राहक सेवा के खराब अनुभव के बाद सोचा क्यों ना दुनिया के लिए एक आसान और बेहतरीन कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर बनाया जाए। यहीं से जन्म हुआ फ्रेश डेस्क का, जो आगे चल करके बना फ्रेश वर्क्स। जी हाँ, ये वही फ्रेश वर्क्स है जो भारत की सबसे पहली सैस कंपनी है जो नैसडैक में लिस्टेड हुई। आईपीओ के बाद इसकी वैल्यू 10 बिलियन यूएसडी यानी लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह दक्षिण भारत की पहली कंपनी थी जिसने दुनिया को बताया कि ग्लोबल टेक सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं बल्कि चेन्नई में भी पनप सकती है। फ्रेश वर्क्स ने 5,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, और मुझे बताने में खुशी होगी कि भारत सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैपिटल के रूप में आगे बढ़ रहा है। जूहू, चार्ज भी जैसी अनेक भारतीय स्टार्टअप्स भारत के जीडीपी में अहम योगदान दे रहे हैं, और आज पूरा विश्व भारत का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का भविष्य मानता है।
1: बिल्कुल, हमारे भारत में अगर हम विकास की बात करें तो आजादी के बाद दिन प्रतिदिन विकास होता रहा, और आज स्थिति हमारी ऐसी है कि पूरे विश्व में हम एक अच्छे पायदान पर हैं। और प्रफुल्ल जी, एक बात और भी है कि जब हम विकास करते हैं तो जैसा भी आपने एक उदाहरण दिया, ऐसे ही लोगों की वजह से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में क्या कोई और ऐसा हम लोगों के बीच उदाहरण है जो नजरिया बनकर हमारे दोस्तों के बीच और जा सके?
0: मैं इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण बताना चाहूंगा कि दो युवा इंजीनियर तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, भारत के आईआईटी से पढ़े जाने माने इंजीनियर जिन्होंने एंथर एनर्जी नामक स्टार्टअप करके भारत का पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया। इसमें नेविगेशन, टच स्क्रीन डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट बैटरी और अत्याधुनिक तकनीक जैसी सुविधाएं शामिल की गईं। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार को एक नई पहचान मिली, यानी 100% भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय युवा आगे बढ़ रहे हैं। एंथर के जरिए 4,000 प्लस नौकरियां जनरेशन हुआ। बेंगलोर की प्रयोगशाला से निकलकर यह स्टार्टअप आज भारत की सड़कों पर हरित ऊर्जा की हवा बहा रहा है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी एंथर एनर्जी ने यह साबित कर दिया कि नया भारत तेज ही नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।
1: बिल्कुल, और उसी का अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा हम लोग देखते हैं अपनी रोडों पर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है वो तादाद बढ़ रही है। धीरे धीरे सरकार भी इसके प्रति प्रोत्साहन दे रही है, और वो चाहती भी है कि ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित हो सके इन वाहनों के माध्यम से, और लोगों में इसकी रुचि भी बढ़ रही है। क्या मानते हैं, अगर हम बात करें अपने देश की तो सबसे ऊपर हमारा कश्मीर है। कश्मीर जैसी जगह पर जब हम जाते हैं तो एक अद्भुत चीज देखते हैं। ऐसे में वहां पर अगर हम बात करें तो क्या रोजगार सृजन कैसे हो रहा है?
0: जब हम लोग कश्मीर की बात करते हैं तो 2020 में DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में सूचीबद्ध स्टार्टअप्स केवल 237 थे, लगभग कहें तो 240 थे, लेकिन 2024 में यह स्टार्टअप्स बढ़ करके लगभग 1000 हो गए हैं। इसमें से कई स्टार्टअप्स महिला नेतृत्व वाले हैं। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के साथ साथ महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ रही है। कश्मीर में राज्य प्रशासन ने एक नई पॉलिसी

0: सी की पहल की, जिसका नाम है जेके स्टार्टअप पोर्टल या फिर हौसला 2.0, जिसका लक्ष्य है कि युवाओं और महिलाओं को उद्यमी बनाना एवं बाजार तक उनकी पहुंच को आसान बनाना और पूरे जम्मू कश्मीर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। आज फास्ट बीटल और ऑल थिंग्स कश्मीर जैसे स्टार्टअप्स हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और आगे बढ़ते भी रहेंगे, निश्चित है। आपकी बताई हुई बातों से सिद्ध हो रहा है, अभी आपने कश्मीर का उदाहरण लिया, कश्मीर तो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि वहाँ पर बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करने का भी प्रयास किया है। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें जहां हम रहते हैं और जिस प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश कहते हैं, और निश्चित है कि जब उत्तम प्रदेश की बात आती है तो बहुत सारे उत्तम उदाहरण भी हमारे सामने मिलते हैं, ऐसे में अगर हम प्रदेश की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे?
0: उत्तर प्रदेश में लगभग 2025 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18,500 सक्रिय स्टार्टअप पंजीकृत है, और मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि जिसमें से 8,000 स्टार्टअप्स महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि नया भारत केवल विकास ही नहीं बल्कि समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक उदाहरण लूंगा। एक स्टार्टअप्स हुआ जिसका नाम है फूल.co। इसमें मंदिरों के फूलों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में बदलने का काम किया जाता है, और इस स्टार्टअप्स में लगभग 1,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। साथ ही पर्यावरण बचाने और नदी प्रदूषण को कम करने का भी बड़ा योगदान रहा है। यह स्टार्टअप्स कचरे से कंचन बनाने का एक सबसे प्रेरक उदाहरण है।
1: वाह भाई,
0: इसी तरह से मैं आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले कई स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे फिजिक्स वाला, पेटीएम, एग्री जंक्शन जैसे कई उत्तर प्रदेश से उभरे स्टार्टअप्स हैं जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात आपने बता दी, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश के लिए भी आपने दिए। जो श्रोता हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे उनके उत्साहवर्धन के लिए?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि यही है नए भारत की वास्तविक, जहां हर युवा केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के सपने को साकार करने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कश्मीर की वादियां हो, दक्षिण भारत की टेक्नोलॉजी नगरी हो या उत्तर प्रदेश जैसे उभरते हुए राज्य। हर जगह युवा अपने नवाचार, मेहनत और संकल्प से नई कहानी लिख रहे हैं। हमें भी इस परिवर्तन की यात्रा में अपना एक कदम अवश्य जोड़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य अब दूर नहीं, भविष्य हमारे ही हाथों में आकार ले रहा है।
1: देखिए कितनी बढ़िया बात आपने प्रफुल्ल जी हमारे श्रोताओं के साथ जो साझा की है, निश्चित है कि वो उनके उत्साह के लिए, साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन के लिए और जो कुछ आज हमारे बीच में हो रहा है हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम सबको कैसे रोजगार सृजन के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उस क्षेत्र में उतार के अपने ही नहीं, आपने जैसा कहा भी कि अब रोजगार सृजन की बात है तो हम लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। निश्चित है कि हमारे श्रोताओं को अच्छा लगा होगा। आप विज्ञान प्रवक्ता हैं प्रफुल्ल गुप्ता जी, आपकी जानकारी जो हमारे श्रोताओं ने सुनी है उसका अनुसरण करेंगे, लाभ होगा आपको इस कार्यक्रम में, हम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नए भारत की रोजगार सृजन में युवाओं की भागीदारी विषय पर प्रफुल्ल गुप्ता जी से बातचीत, और आपसे बातचीत कर रहे थे आलोक गुप्ता ने। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, आपने सुना होगा ध्यान से, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिसे हम ये नहीं कह सकते कि बेरोजगारी है। अगर हम काम करना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे देश में हमारे लिए काम है, हमारे प्रदेश में हमारे लिए काम है। तो आइए इस वार्ता के बाद अब सुनते हैं कुछ संदेश।
3: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: आपके संदेश
7: संदेश से

0: के संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
4: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं ये गीत, शान और शांतनु की आवाज में। फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स,

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना
1: टॉल कर ही नहीं इनकर भी मिलता है बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: प्रणाम अयोध्या।
4: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। 9:09 प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
6: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए।
7: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
6: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
7: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दोस्तों कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आपके संदेश के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त रिचा। कार्यक्रम का पहला संदेश पढ़ते हैं गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया ने। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म डॉन का गीत। किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये प्यारा सा गीत।
10: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबाए। आहा अरे

अगला गीत सुनना चाहते हैं कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका मन्नत, जयप्रकाश राहुल, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह और राहुल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत फिल्म बगावत का।

0: अंदर चलिए।
1: क्या?
0: राजकुमारी के अंदर जिस रूह का साया था पीर मुर्शिद ने अपने अंदर ले लिया।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास संदेश भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहानी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बेताब का गीत, तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और समीर कुमार के गाए हुए गीत को। लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आपकी संदेश, आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास संदेश आया है मुक्कुम फूल चिंचोली तालिका पंडरपुर, जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज, दिलशाद, नासिर मुलाणी, इनके चाचा चाची और पूरा मुलाणी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बाजीगर।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनना चाहते हैं। पटियाली रोड गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अकील कुरैशी, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा और हबीबा, आप सभी सुनना चाहते हैं बाजीराव मस्तानी का गीत, तो सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये प्यारा सा।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: दोस्तों, हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद का गीत, तो शुरू करिए हमें फोन करने का सिलसिला, यहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा अपनी पसंद का गीत सुनने का सुनहरा अवसर। अपनी फरमाइश बताइए और अपनी मनपसंद धुनों का आनंद उठाइए। हमारे साथ लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
4: हेलो,
0: हाँ नमस्ते सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
4: नाम,
0: फिल्म नाम का कौन सा गीत सुनेंगे? चलिए ठीक है, आप किसी को सुनवाना चाहते हैं या खुद सुनना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, तो हम आपकी पसंद का गीत रेडियो सेट पर बजा रहे हैं और आप सुनिए अपनी पसंद का गीत। हमको यूं ही कॉल किया करिए। थैंक यू सर।

0: दोस्तों, हम आपका स्नेह और सहभागिता ही इस कार्यक्रम की पहचान है। और अगर आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो डायल करिए हेलो अयोध्या का नंबर 7376804090 और आइए बात करते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: आप उज्जैन से बात कर रहे हैं, आप हमारा कार्यक्रम रोज सुनते हैं?
1: हाँ जी, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम और गाने के बोले आंखों में तेरी अजब सी अदाए हैं।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आप सुनिए अपने रेडियो से। थैंक यू हमें फोन करने के लिए।

0: हमारे कार्यक्रम में सीमा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। हेलो हेलो।
1: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्ते सीमा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज हमारे कार्यक्रम में?
1: अनाड़ी फिल्म का।
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फूलों का चेहरा तेरा।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है उदित नारायण की आवाज में, तो हम आपको सुनाते हैं। आप कार्यक्रम अयोध्या के सारे कार्यक्रम सुनती हैं आकाशवाणी अयोध्या के? चलिए, आप लोगों का स्नेह है जो हमारा कार्यक्रम यूं ही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए, कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमको फोन करते रहिए। कुछ कहना चाहती हैं आप? चलिए ठीक है, आप जो है गीत सुनिए सुबह सुबह प्यारा सा। नमस्ते।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
3: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
3: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
5: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां हर गीत किसी न किसी श्रोता की मुस्कान बनकर आपके बीच पहुंचता है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक श्रोता, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
7: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
7: एकदम बढ़िया जी, विष्णु प्रसाद बोल रहा हूँ फिरोजपुर पंजाब से।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें कॉल करने के लिए, आपकी आवाज़ बहुत ही जानी पहचानी है। क्या हाल चाल है आपके पंजाब के?
7: एकदम बढ़िया जी, आपका कार्यक्रम चल रहा है, आनंद ले रहे हैं जी।
6: बहुत अच्छी बात है, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
7: जी? सुहाग मूवी का सॉन्ग है जी, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा।
6: अच्छा ठीक है, तो आप अपने रेडियो सेट पर सुनिए गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अपने परिवार के साथ आपका दिन मंगलमय हो।
7: मैम जी।

0: दोस्तों कहते हैं कि गीत कभी पुराने नहीं होते, वह हर बार नए एहसास लेकर आते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है और उनका गीत सुनते हैं उनकी पसंद का। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, हेलो उदय कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं बीरेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ, मसौदा चीनी मिल से।
0: बीरेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम हमें तो भाभी फिल्म का सुनना था गाना।
0: भाभी फिल्म का?
1: जी।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनेंगे भाभी फिल्म का? कौन सा गीत सुनेंगे? बहुत प्यारा गाना है ये सर, मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: जी जी।
0: तो आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, और यूं ही हम अपना स्नेह आकाशवाणी अयोध्या पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर।

0: दोस्तों आपका प्यार और विश्वास इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। आपकी फरमाइशें, आपके संदेश और आपका अपनापन हमें हर दिन नई ऊर्जा देते हैं। आइए हम अपने नियमित श्रोता मंजरी मिश्रा जी से बात करते हैं। उन्होंने फोन किया है। हेलो, नमस्कार मंजरी जी, कैसी हैं? आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। हेलो
1: जी, उमराव जान,
0: उमराव जान फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं।
1: अरे आप तो मेरी जान।
0: अच्छा ठीक है, क्या करती हैं आप?
1: समय निकाल कर अपने माता के मंदिर में उनके।
0: चलिए बहुत अच्छा काम करती हैं आप। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है मैम, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और यूं ही अपना अपनापन बनाए रखिएगा। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, हेलो अयोध्या कार्यक्रम में हमसे जुड़े सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपनी फरमाइशें भेजी, संदेश दिए और इस संगीतमय महफिल को यादगार बनाया। उन सभी का हार्दिक आभार। फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दोस्त ऋचा को। नमस्ते।
3: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चूड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू साहू जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं? तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नचकारती हैं, फिर चूड़ी फेंकर नचकारती हैं मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना।
0: जी, तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पर बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी,
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं, वो खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना? तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता ये बाहर पानी अंदर ये आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता फिर सुबह 11 बजे तक, अरे यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत से काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
1: नहीं
0: है।
1: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा, जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है।

0: लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, फिर जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमा जी का गाया गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी,
1: अपने ड्राई क्लीन का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने

0: परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना। अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
1: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है, मन चाहेगी इसमें।
1: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमेश होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी चुस्ती मरेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है,
1: अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, ताना मेरा मंदा मेरा, ताना मेरा मंदा मेरा, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, क्या कर सकते हैं, क्या है? नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका। बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: जी, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती जाते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेष रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग बात जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत के बोल है, पायले छुनमुन छुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नी जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ जावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी,
0: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा आप हाँ। करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है। विविध भारती तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे, लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है अल्लाह की, है ना?
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बायो इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? क्या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी, जी।
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ। जी
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनको बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी हाड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम सिड़ा कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको, सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है, इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगाते हैं तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगाते हैं जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी आप गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत,
0: मोहम्मद अजीज की आवाज़।
1: जी
0: चलिए, तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों

0: के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

में विद्वारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेश, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। से बोल रही है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद

0: में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की

तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एसटी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त रक्षा श्रीवास्तव। दोस्तों, लोक गीत केवल गीत ही नहीं बल्कि हमारे समाज की भावनाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन के रंगों का जीवंत दस्तावेज भी हैं। जन्म से लेकर विवाह तक, खेतों से लेकर त्योहारों तक, हर अवसर पर लोक गीत हमारे

सुख दुख के साथी बन जाते हैं। चाहे कजरी हो, बिरहा, सोहर, फगुआ या आल्हा, हर लोकगीत अपनी मिट्टी की खुशबू और लोक जीवन की सादगी को समेटे हुए हैं। इन गीतों में प्रेम है, विरह है, उत्सव है और जीवन का गहरा दर्शन भी।

अमरनाथ यादव व साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये किसानी गीत। राजा राम यादव व साथियों की आवाज में आइए सुनते हैं ये पर्यावरण गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.

0: अरे धरती वीरान ना बनावा, धरती वीरान ना बनावा।
1: कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत हमने लिया है अमरनाथ और साथियों की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी आप सुन रहे थे अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जहां आपकी बातें, आपकी फरमाइशें और आपके पसंदीदा गीत बन जाते हैं इस महफिल की जान। और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी कि रक्षा श्रीवास्तव। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हमने लिया है आप सबकी पसंद पर। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, तिवरता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल। आप सबने पसंद किया है फिल्म डोली का गीत। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, गंजो डुंडवारा से आफताब अंसारी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से उदयभान पाल, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म डोली का ये गीत। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं, आज के दौर में दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन फेसबुक हमें अपनों से जोड़े रखता है। इसी आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर आप अपने विचार, शायरी और अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, आइए अब देखते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास कहां से आई है। जलालपुर जिला सहारनपुर यूपी से श्रवण कुमार प्रजापति, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, आप सबने पसंद किया है फिल्म स्वीकार किया मैंने का गीत। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है छिंदवाड़ा बरेडी एमपी से नाना जी लामसे, इंग्लिश फरका भागलपुर बिहार से विनोद कुमार यादव, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रायपुर से नीलू मेघ। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म स्वीकार किया मैंने का।

गीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, कहते हैं कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि सुरों से कही जाती हैं। इसीलिए आज की महफिल में हम लेकर आए हैं ऐसे ही चुनिंदा गीत जो कभी मुस्कान बनकर हमारे चेहरे पर खिल उठते हैं तो कभी पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास कहां से आई है। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, जलालाबाद वेश से सुरेश गगनेजा, राज पैलेस मौनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण साहू, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, बाजार रोड मुंगीसापुर से जाकिर मंसूरी, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, बत्रय बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, गांव कुमार हेड़ा राज सहारनपुर से मसरूर हसन। आप सबने पसंद किया है फिल्म धनवान का ये गीत। युगल स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का। तो श्रोताओं, आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म धनवान का ये गीत।

दोस्तों आज की इस सुरीली महफिल में हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे यादगार गीत जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। प्यार, दोस्ती, यादें और जिंदगी के रंग सब कुछ समेटे हुए है ये नगमे। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म हीर रांझा के गीत के लिए। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, सहारनपुर से राधा नामदेव, बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, लोहरडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले। आप सबने पसंद किया है फिल्म हीर रांझा का ये गीत। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, कवर कॉलोनी बडाह जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, पीपरपाला पालचुआ मंगोली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा। तो श्रोताओं, आइए आप सबकी पसंद पर फिल्म हीर रांझा का ये गीत सुनते हैं। आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
3: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
3: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
3: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
3: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
4: और भाई साहब क्या हाल है?
5: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
4: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
5: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

दोस्तों इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जानकारी की जा रही है। चेतावनी पर जरूर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना जैसे लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि उपरोक्त किसी भी लक्षण एवं हीट रैश और हीट क्रैम्प का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। अधिक से अधिक पानी पिए। यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी अवश्य पिए। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाए। ORS, घर के बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का प्रयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों जैसे कि तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद पत्ता आदि का प्रयोग जरूर करें। हल्के रंग के हल्के वस्त्र पहने। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढककर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग करें। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा अवश्य पहने और पैरों के बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें। फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म धरती के गीत के लिए। कस्बा सेंथल, जिला बरेली से फरियाद हुसैन।

अंसारी, दयानंद कॉलेज, भवानी पेठापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, धाड़ी नांदूर महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, गांव हियावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, ग्राम एंचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से दर्पण कुमार सैनी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से राघव बघेल। आप सबने पसंद किया है फिल्म धरती का गीत। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मेरठ से दिग्दर्शन गौड़ और तालुका निवासा खुपती महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपल घट। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म धरती का ये गीत। युगल स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

भावनाओं का आईना भी है। हर गीत किसी न किसी याद, किसी रिश्ते या किसी अनकही बात को अपने साथ लेकर चलता है। अब बढ़ते हैं अगले खूबसूरत नगमे की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास फरमाइशें कहां से आई हैं। कार्यक्रम में अगली फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म किनारा के गीत के लिए। बरेडी एमपी से हुकुम करमरकर, कोल सिटी बरगाना से मोहम्मद अफजाल ताज, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, गांव बांडीवाला फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूड़क, पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, ग्राम लसूडिया पाता तहसील

दरवाजा इटा से नबी हसन अब्बासी, ग्राम लसूरिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, हरदोई रोड लखनऊ यूपी से खिल्लू परवेज, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, कस्बा उघती से देवेंद्र कुमार गुप्ता। आप सबने पसंद किया है फिल्म किनारा का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, कितनी गहराई, कितनी सादगी और कितनी खूबसूरती है इन शब्दों में, यही तो जादू है फिल्म संगीत का, जो समय की सीमाओं को पार कर सीधा दिल तक पहुंच जाता है। और आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमारे जीवन को कई रंगों से भर देता है। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुद्दत से। फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है चंदौसी रोड चमनपुर यूपी से मुकेश गौतम, गंज डुंडवारा से शमसुल कमल राही, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, जबलपुर एमपी से माधव नामदेव, सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, गोंडा यूपी से प्रवीण शुक्ला, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार बघेल, कलनौर से नरिंदर शर्मा, साधुशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, गुलबालोद एमपी से कुंवर कृपाल सिंह और बोडसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू। आप सबने पसंद किया है फिल्म मुद्दत का ये गीत। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की।

दोस्तों, गीत संगीत की यही तो विशेषता है। हर गीत अपने भीतर एक कहानी समेटे रहता है। बदलते समय के साथ संगीत के रंग भी बदले हैं, लेकिन सुरों की मिठास आज भी वैसे ही बनी हुई है। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है इन फेसबुक श्रोताओं की पसंद पर। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत साहू, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, गुजरात पाटन से धीरज रबारी, पहाड़गंज मल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, बांदा यूपी से फहीम मंसूरी, लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, काशनिवास नागपुर से प्रकाश रंभाटे, खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, गंज डुंडुवारा से शमसुल

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा से दीजिए अपनी दोस्त रक्षा श्रीवास्तव को अनुमति। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नई बातों और नई यादों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और गीत संगीत से अपना रिश्ता बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
4: को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
7: आरएचएल गोल्ड डीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास।

0: और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
2: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को रक्षा श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रीकांतो आचार्य की आवाज में आइए सुनते हैं प्राइवेट एल्बम से ये गीत।

गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। सलमा आगा की आवाज में आइए सुनते हैं प्राइवेट एल्बम से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 2:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें।

0: मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी

0: आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम

0: बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाठी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। में 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एक से 1.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम अंगना

बहनों, आज है जो है खास दिन, और खास दिन का अपने सब जो है पहले जान लें जाए। खास दिन यह लिए है कहे से जो नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। एक एक कारण मनावे के कारण

मुख्य उद्देश्य भी है कि नशीली दवाओं के जो सेवन है और ओके जो अवैध व्यापार करा जात है उसे जो है समाज में जो होए वाले नुकसान है ओकरे बारे में अपने सबके जागरूकता बढ़े, अपने सब ओकरे प्रति जो है सजग होई और सहज जो है रूप से जो ई सब आसपास में अपने व्यापार चलता है एक तरह से देखा जाए ई अपराध है और यह अपराध से अपने सब बच सकी, यह लिए जो है आज के जो दिन है वो बहुत अपने सब के लिए खास है। मेरे नशीली दवा का व्यापार करे वाले और एक सेवन करे वाले के खिलाफ जो है आम लोगन सरकार और समुदाय सबका एकजुट होइका परे तब यह समस्या से छुटकारा मिल पाए। सबसे पहले अपने सबका यह बात कहे ताएं जो है आस पास में रहे वाले लोगन का भी जागरूक करे का जरूरत है और अपने सब जो है जब खुद जागरूक हो ना तब दूसरे का अपने सब अच्छी बात बता सके थे या जागरूक कह सके थे। मैनो जो है जो छोट छोट जानकारी अपने सब कार्यक्रम में सुना जाता है ओ का अपने आप तक सीमित ना रखे के चाहिए। जैसे अपने सब कार्यक्रम में सुनत है कुछ जो है अपन सखिए है जो ना सुन पाए हैं तो अपने सबके जिम्मेदारी होते है कि जो अपने सब ऐसे जानकारी हासिल की हन ओका अपने और सखियन तक बात करा जाए और यह बात पर जो है अपने आसपास में जो बहने हैं या अपने आसपास में जो भैया लोग हैं उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। जो छोट मोट लड़के हैं अपने खिया जो बाल्यावस्था से थोड़ा ऊपर हो चुका है किशोरावस्था में जात की ना ज्यादातर लड़के जो है नशा पत्ती के थुम आए जाते ना तो उनका जब पहले से अपने सब जागरूक करा जाए ना तो कौन कौन समाज का जो रीढ़ है युवा जोन हो जाता है उनका अपने सब अगर जागरूक करा जाए तो जो नशीली दवा है के सेवन जो बच्चे करे लागे थे ना समझिम करे थे तो वह कम से कम बच जाएंगे तो अपने सबके जो समाज है ना वो नशा की लत से जो है बच जाए। कहे का मतलब है कि अपने सबका जो जिम्मेदारी है अपने सबका समाज के प्रति जो अपने सबका जिम्मेदारी है ओका करे के चाहिए। बहनों अवैध दवा के जो सेवन है समाज का खोखला बनावत है एक प्रति आज के जो युवा है जागरूक करे का युवा का जरूरत है और समाज का एक इकाई जो है नशा करत है तो ई जो एक इकाई यानी कि एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो समाज का धीरे धीरे नशा के लपेट में ले चला जाता है। मैनो हम सबका ये दिन एक दिन न बल्कि हर दिन पे नजर रखे का परे अपने देश का समाज का परिवार का नशीली दवा के सेवन और व्यापार के खिलाफ काम करे का परे अपने सबका एक ताय जोन है एक दिन चर्चा के हे से अपने सबके ये जो समस्या है ना वो कहूँ जो ना है हमें ना लागत है समस्या का समाधान हुए। अपने सबका रोज अपने बच्चन पे अपने आसपास जो जो भी लोग हैं उन पर नजर भी रखे पड़े और उनका जागरूक भी करे पड़े। हमारे सबका जो जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति ऊपर जो ना है अपने सबका काम करे का चाहिए। बहनों आज है मुहर्रम और कार्यक्रम अंगना सुनने वाली सब सखियन का मुहर्रम जो ना है देखा जाए तो अपने सब मनावा जाते है कुछ कारण है मनावे के ओके कारण ये है कि मुहर्रम जो है ना इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर होते है ओके पहला महीना है। इस्लाम धर्म में ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है। मुहर्रम शब्द का अर्थ है पवित्र। बहनों मुहर्रम के मुख्य रूप से जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासा यानी नाती रहिन हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के शहादत का याद में शोक और त्याग के रूप में मनावा जाता है। बहनों मुहर्रम इस्लामिक नववर्ष के शुरुआत के भी प्रतीक है। यह महीना के संदेश है अन्याय के खिलाफ डटा रहब सब्र करब और अच्छाई के मार्ग पर अपने प्राण के आहुति दे दिए अपने प्राण का आहुति दे में पीछे ना हटे का चाहिए। कहे का मतलब सच्चाई के ताए जीवन का दांव पे लगाए दे का चाहिए। मैंनो हम सबका ये पृथ्वी पर जीवन जिए का अधिकार है लेकिन प्रेम सहयोग और सौहार्द के साथ में एक दूसरे से प्रेम से जुड़ा रहने का चाहिए। बिना भेदभाव के जीवन का सरल तरीके से जिया जा सकत है और जो है अपने सब एक साथे साथे कार्यक्रम में लाही एक वार्ता सुन ली जाए जिसका विषय है समझदारी भरी परवरिश स्मार्ट पेरेंटिंग आधुनिक ग्रामीण समाज की आवश्यकता। वार्ताकार हैं मंजू सिंह जी जो उनकी अध्यापिका है तो पहले सुन ली जाए।

0: वार्ता, फिर आगे कीन जाए अपने सब और बातचीत।
1: आधुनिक ग्रामीण समाज में बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए स्मार्ट पेरेंटिंग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ग्रामीण समाज के विकास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही वह पहला विद्यालय है जहां बच्चे जीवन के मूलभूत संस्कार, मूल्य और व्यवहार को सीखते हैं। माता पिता बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं और उनके व्यक्तित्व निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समय के साथ समाज, शिक्षा, तकनीक और जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव ग्रामीण समाज में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज का ग्रामीण समाज पहले की तुलना में अधिक जागरूक, शिक्षित और तकनीकी रूप से जुड़ा है। ऐसे में बच्चों के पालन पोषण की पारंपरिक पद्धतियों के साथ आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक हो गया है, जिसे हम स्मार्ट पेरेंटिंग कहते हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग का अर्थ केवल बच्चों के भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि उनकी भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक आवश्यकताओं को समझते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना है। स्मार्ट पेरेंटिंग एक ऐसी पालन पोषण पद्धति है जिसमें माता पिता बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं तथा उन्हें सही दिशा प्रदान करते हैं। इसमें अनुशासन और प्रेम दोनों का संतुलन बनाए रखा जाता है। स्मार्ट पेरेंटिंग का उद्देश्य बच्चों को केवल पढ़ाई में सफल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील, आत्मनिर्भर और नैतिक नागरिक बनाना है। यह बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उसे विकसित करने पर बल देती है। सबसे पहले यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि इसके प्रमुख तत्व क्या क्या हो सकते हैं। प्रभावी संवाद, सकारात्मक सोच, बच्चों की भावनाओं का सम्मान, तकनीक का संतुलित उपयोग, नैतिक मूल्यों का विकास, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का निर्माण, शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान। आधुनिक ग्रामीण समाज का बदलता स्वरूप। वर्तमान समय में ग्रामीण समाज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पहले जहां ग्रामीण जीवन पारंपरिक मूल्यों और सीमित संसाधनों पर आधारित था, वहीं आज शिक्षा, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीविजन और सोशल मीडिया के अपने गाँव को भी विश्व से जोड़ दिया है। सरकारी योजनाओं, डिजिटल इंडिया अभियान, बेहतर सड़क और संचार सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित हुई हैं। आज ग्रामीण बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण बच्चों की सोच, आकांक्षाएं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल रहे हैं। ऐसे में माता पिता को भी अपने पालन पोषण के तरीके में बदलाव लाना आवश्यक हो गया है। यदि वे पुराने तरीके पर निर्भर रहेंगे तो बच्चे और माता पिता के बीच विचारों का अंतर बढ़ सकता है। ग्रामीण समाज में स्मार्ट पेरेंटिंग की आवश्यकता बहुत है। बच्चे के समग्र विकास के लिए बच्चों का केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। स्मार्ट पेरेंटिंग बच्चों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। शिक्षा के महत्व को बढ़ावा अत्यंत आवश्यक है। आज शिक्षा सफलता की कुंजी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर बच्चों की पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। स्मार्ट पेरेंटिंग के माध्यम से माता पिता बच्चों को नियमित अध्ययन, पुस्तक पढ़ने की आदत और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा और कैरियर का चयन करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तकनीक के सही उपयोग के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट आज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं। तकनीक बच्चों के लिए ज्ञान का बड़ा स्रोत है, इसके लिए दुष्प्रभाव भी है। स्मार्ट पेरेंटिंग बच्चों को तकनीकी का सकारात्मक उपयोग सिखाती है। माता पिता बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा, ज्ञानवर्धक वीडियो और रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और गेमिंग की लत से बचाने के लिए उचित मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आधुनिकता के प्रभाव में कई बार नैतिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में बच्चों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सम्मान और सहयोग जैसे मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। स्मार्ट पेरेंटिंग में माता पिता स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते हैं और अपने व्यवहार से बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं। इससे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है और वो समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।

बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए ग्रामीण समाज में आज भी कुछ सामाजिक कुरीतियाँ मौजूद हैं। बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा से वंचित करना जैसी समस्याएं बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। स्मार्ट पेरेंटिंग इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। माता पिता बच्चों को समान अवसर प्रदान करते हैं और उनकी शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग की प्रमुख विशेषताएं सबसे बड़ी ये है कि सकारात्मक संवाद। स्मार्ट माता पिता बच्चों से खुलकर बातचीत करते हैं। वे बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। अनुशासन और प्रेम का संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक लाड़ प्यार दोनों ही बच्चों के विकास के लिए उचित नहीं है। स्मार्ट पेरेंटिंग में अनुशासन और

0: विकास के लिए उचित नहीं है। स्मार्ट पेरेंटिंग में अनुशासन और प्रेम का संतुलित प्रयोग किया जाता है। बच्चों की रुचियों का सम्मान करना चाहिए। हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है। कुछ बच्चे खेल, कला, संगीत या विज्ञान में रुचि रखते हैं। स्मार्ट माता पिता बच्चों की रुचियों को पहचानते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए। स्मार्ट पेरेंटिंग बच्चों को स्वयं निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। इससे उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। ग्रामीण विकास में स्मार्ट पेरेंटिंग की भूमिका क्या है? स्मार्ट पेरेंटिंग केवल बच्चों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के विकास को योगदान देती है। अब बच्चे शिक्षित, संस्कारी और आत्मनिर्भर बनते हैं तो वे अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नई तकनीकों को अपनाते हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग से विकसित युवा वर्ग सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। इस प्रकार यह ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाती है। स्मार्ट पेरेंटिंग के सामने चुनौतियाँ क्या क्या है? हालांकि स्मार्ट पेरेंटिंग की आवश्यकता बढ़ रही है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले माता पिता में जागरूकता की कमी, आर्थिक समस्याएं, शिक्षा का निम्न स्तर, तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता, पारंपरिक सोच और सामाजिक दबाव, बच्चों के लिए पर्याप्त समय न निकाल पाना। इन चुनौतियों का समाधान जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। स्मार्ट पेरेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपाय हैं। माता पिता के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। परिवारों में संवाद और सहयोग की संस्कृति विकसित की जाए। सरकारी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा पेरेंटिंग संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। आधुनिक ग्रामीण समाज में स्मार्ट पेरेंटिंग समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवेश में केवल पारंपरिक पालन पोषण पर्याप्त नहीं है। बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, नैतिक मूल्य, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्माण के लिए स्मार्ट पेरेंटिंग अत्यंत आवश्यक है। यदि ग्रामीण माता पिता अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें, उनकी भावनाओं को समझें, शिक्षा और तकनीक का सही उपयोग सिखाएं तथा अच्छे संस्कार प्रदान करें, तो वे न केवल अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि स्मार्ट पेरेंटिंग आधुनिक ग्रामीण समाज की आवश्यकता बन गई है।
1: बहनों, अब इनका सब सुनत रही हैं वार्ता, जिसका विषय रहा समझदारी भरी परवरिश, स्मार्ट पेरेंटिंग, आधुनिक ग्रामीण समाज की आवश्यकता। वार्ता कर रही मंजू सिंह, जो उनकी अध्यापिका रही। आगे अपने सब और बतकही सुना जाए, उसे पहले सुन लीन जाए ये विज्ञापन, फिर आगे जो है अपने सब बतियाए खोए।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
6: और व्हाट्सएप नंबर 8303921911 पे जाए के ANG।

0: लोकगीत टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: बहनों आगे जो ना है बतकही किन जाए यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज एक और खास दिन है। कहे से जो ना है 26 जून का प्रतिवर्ष जो ना है ये दिवस मनावा जाता है। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह लिए मनावा जाता है बहनों। एक जो मुख्य उद्देश्य है वो यातना के जो शिकार भय लोगों के प्रति जो ना है एकजुटता उनका ई महसूस करावे का है कि वे यह लड़ाई में अकेले ना हैं। उनके प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार के ताई जोन प्रथा है दुनिया भर में समाप्त करे के ताई जागरूकता बढ़ाऊ है। बहनों ई दिन जो ना है एक आधिकारिक रूप तौर पर यातना पीड़ित लोगन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किए गए हैं। ऐसन लोगन का भी न्याय और सम्मान और उचित पुनर्वास मिले का अधिकार है। देश के हर एक सदस्य का समाज में मान सम्मान मिले का चाहिए। यातना से पीड़ित लोगन का इस संदेश मिले का चाहिए कि वे भी समाज के कड़ी हैं, समाज के ताई जरूरी हैं और समाज उनके साथ में है। यातना इंसान का अपनी ओर से ना मिलत बहनों, अपने समाज के लोग ही उनका जो है कहूँ ना कहूँ पीड़ित करते हैं। तो अपने समाज का के प्रति जो ना है मनुष्यता के प्रति मानवता के प्रति एक जीव समझ के जो है हर व्यक्ति का मान सम्मान दें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। चाहे वह चाहे जो ने स्थिति में हुए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुए या ना हुए या मानसिक स्थिति उनकी अच्छी हुए या ना हुए, जो अपने सबका जिम्मेदारी होता है ना ओका अपने सबका निभावे का चाहिए और ओकरे प्रति अपने सबका जागरूक रहे का चाहिए। अपने सबका एक दूसरे का जो है सम्मान करे का चाहिए। मनुष्य होए के कारण हर जीव के प्रति अपने सबके जो दया भाव है ओका रखे का चाहिए और एक दूसरे के मान सम्मान भी करे का चाहिए। यही के ताई जो है ये खास दिन अपने सबके ताई है। कहे से कि अपने सब मनुष्य हुए और भगवान चाहे जी का या ईश्वर या प्रकृति कहा जाए, चाहे जी का चाहे जो उन कमी चाहे जब दे सकते हैं और चाहे जब हमारे इन सबका आपस में देखें खास बना सकते हैं। क्यों हर इंसान खास है, हर इंसान के पास भगवान कुछ न कुछ खासियत दे हैं और कुछ न कुछ कमी दे हैं। तो हर इंसान में अपने सबका कोशिश करे का चाहिए कि जो ना है उनके खासियत देखी और कमी का जो ना है कहूँ न कहूँ नज़रअंदाज करी और यही से जो ना है अपने सब अच्छे समाज के निर्माण कर सकी थे। समाज में जोन भी इंसान जो ना है सतावा है या उकरे प्रति जो है उसे उकरे ताई अन्याय भया है उकरे साथे या उका मान सम्मान में उके घटौती भयवा तो उके कहूँ न कहूँ जो है अपने समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। तो अपने समाज में अगर मेर के क्यों बा तो ओकरे प्रति जो है अपने सबके अंदर जो है संवेदनशील भावना हो के चाहिए और सम्मान का भावना हो चाहिए। दुनिया भर में कीन जाए वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अपने सबका उनके साथे में उनके यह लड़ाई में साथे रहे का चाहिए, उनका अकेले ना छोड़े का चाहिए और ना ही जो है उनका ये महसूस करावे का चाहिए कि वह यह लड़ाई में अकेले हैं। बहनों अगर अपने सब जो है जागरूक रहा जाए ना तब एक दूसरे का जो है या दूसरे व्यक्ति का जागरूक किन जा सकत है। बहनों जकरे अंदर कोनो कमी है और आपके अंदर कोनो खासियत है तो का बांट के अपने सब समाज का अच्छा बना सकित है। चाहे वह जीव जंतु है या आसपास के जो है अपने सबका माहौल है उका भी बदले की जिम्मेदारी अपने सबका है। और भी जो लोग है उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, चाहे वह सामान्य हुए या असामान्य हुए, ये जिम्मेदारी अपने सबका है। अपने सबका ये काम बखूबी निभावे का चाहिए। बेनो आगे जो ना है बात बत कही करे का तो इच्छा बा, लेकिन कार्यक्रम में हमार मन कहता है ना एक ठीक गौनई सुन लेन जाए।

गौनई सुन के तो जोन है मन झूम गए। अब आगे बात कीन जाए सौंदर्य के। आज है शुक्रवार और शुक्रवार के बद कही कीन जात है सुंदरता के। आज हम करम मुल्तानी मिट्टी से गर्मी माँ झुलसी त्वचा का कैसे निखारें। प्रकृति से मिली हुई मुल्तानी मिट्टी त्वचा के ताए वरदान।

0: है, इससे चेहरा से जो ना है अतिरिक्त तेल, गंदगी और टैनिंग यानी जो धूप से अपने सबके त्वचा झुलस जात है उसका बेहतरीन बनावा जा सकत है। बहनों अगर आपके त्वचा जो ना है तैलीय है तो एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच गुलाब जल और नींबू को कुछ बूंद मिलावें और पेस्ट बनावें, फिर चेहरा पर लगावें, 15-20 मिनट तक लगाए कर रखें, फिर सादा पानी से धो लें। ऐसे अगर जो ना है ऐसे आपके त्वचा पर जो पिंपल या तेल है वो कम हो जाए। और अगर आपके त्वचा रूखी है जेका कह जाए ड्राई त्वचा, तो एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिए और मन जो ना है एक चम्मच शहद, दूध या मलाई लें, मिक्स करें, अच्छे से पेस्ट बनावें, फिर चेहरा पर 15-20 मिनट तक लगाए कर रखें, फिर अच्छे से सादे पानी से धो लें। शहद और मलाई से आपके जो त्वचा है ना उमन नमी बनी रहे, जो ना है ई काम करत है जो अपने सब दूध है मलाई उमन मिलाई थे। बहनों अगर त्वचा जो ना है धूप में झुलस गया है तो मुल्तानी मिट्टी लिए एक चम्मच, उमन दही या टमाटर का रस मिलावें और थोड़ी सी हल्दी मिलावें, पेस्ट बनाए, चेहरा पर लगाए, फिर साफ पानी से चेहरा धो लें। ये पेस्ट लगाए से चेहरा का जो मृत कोशिका है वो हट जाए और जो टैनिंग है यानी धूप से जो झुलसी है आपके त्वचा वो कहूँ न कहूँ अच्छे से साफ हो जाए। बहनों लेकिन ध्यान रखें कि एक जो ना है माटी समझ के रोज ना लगावें, हफ्ता में 2 या 3 बार ही लगावें और सुखावे के मतलब ई ना होत कि मिट्टी पपड़ी बन जाए। जब भी लगावें ई ध्यान जरूर रखें कि पेस्ट का पपड़ी ना बने दें। पैक लगाए के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगावें जैसे त्वचा में नमी बनी रहे। बहनों अपने त्वचा के हिसाब से ही पैक लगावें, ऐसन समझदारी दिखावें जैसे जो ना है बेहतरीन परिणाम मिले। आगे और बातचीत की जाए एक अनुमति घड़ी ना देती है, फिर मिला जाए कोनो और दिन कार्यक्रम अंगना मा चर्चा वार्ता गीत गोनई और जानकारी के साथ मा। यही के साथ ईसु का कार्यक्रम से दें अनुमति। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगना 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा

0: छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उन्होंने उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी

0: एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: 1942 ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you.
2: Happy birthday, Stephen!
4: Thank you,
2: congratulations!
4: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
2: Oh, fine!
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not? Why not?
2: Come! Yeah. Yay.
3: Come!
2: John, please come here.
3: Oh, sure.
2: Yay.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूँ, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।

0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन

0: mathematics and physics.
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
2: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
3: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
5: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
5: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
6: सूरज।
5: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
5: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
6: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
5: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
6: हाँ।
5: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
5: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
5: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
7: वो रात और दिन भी बनाता है।
5: एकदम सही एकदम सही।
6: वो हमें धूप भी देता है।
5: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
5: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
5: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
6: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
5: हाँ हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
5: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
5: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
7: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
5: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है,

0: धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
0: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
3: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
3: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
3: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
3: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
3: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
3: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
1: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कुल मिला के
0: 70
1: हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है केंद्रीकृत विविध भारती सेवा।

0: हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहाँ पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात और है?
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है। आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आम की ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का काम करते हैं तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है।

0: भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ। और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति ये देना, ये प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म बुड्ढी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है, क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा, बड़ी खुशी हो।

0: आपसे बात करके।
1: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना जी, हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है, तो यानी किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
0: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी

0: के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जो संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
1: तो ये गाना गुनगुना के बताइए आप
0: जी।

0: सारे ही अच्छे लगते हैं,
1: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती, 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया, तो आप योग करती हैं, व्यायाम करती हैं?
0: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह।
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: ये कन्यादान टीचर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
1: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हरियाणा हिसार से।
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी, क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है।
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिहार पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर आप तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवारी कुछ भी

0: अपनी जिंदगी?
1: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही है, यानी यूँ कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
0: बहुत, बचपन से, मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से सबसे।
1: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
0: संगीत तो बस बस गया ना, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया। अब मैंने 3 महीना उस तक योग किया, अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूँ मैं जरूर करती हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया और मैं अपना जो दिन कर गया है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके बदौलत आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब हम योग करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: तुम लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। ये उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे।

जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की। हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए यहाँ तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गीसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा।

साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं।

सुबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब

सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर

तुलसी और गुलाब के फूल बांट रहे थे। शिरवान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय

ये उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का

फिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आया हूँ, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं। फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से। ये है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ईयर पर। सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ रहेगा आपका बरसों पुराना आपका रेडियो मीत AJ अमरजीत, जो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या FM की आवाज़।

आकाशवाणी अयोध्या एफएम से आइए सबसे पहले सुने युवाओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसे आज प्रेजेंट करेंगी दिशा श्रीवास्तव। बस कुछ ही पलों में

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। वॉल्यूम को कर लीजिए फुल, क्योंकि आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव लेकर आ गई है मजेदार संगीत और बातें। उम्मीद है कि आपका दिन एकदम बढ़िया रहा होगा। खैर, दिन कैसा भी रहा हो, अब आगे सब बढ़िया है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे बहुत कुछ खास और प्यारे प्यारे ट्रैक्स बना देंगे आपकी शाम को और भी मजेदार। तो फटाफट से जान ले कि क्या होगा आज खास। चर्चा में बात करेंगे मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मुहर्रम की। स्थान सेगमेंट में चलेंगे उदयपुर और होगा फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट शब्दावली। जानेंगे डिजिटल तकनीक और योग के बारे में, जिसे बताएंगे अविरल श्रीवास्तव, और सुनेंगे मजेदार ट्रैक्स जो कर देंगे आपके मूड को एकदम से फ्रेश। अच्छा दोस्तों, इमेजिन करिए, शाम का समय है, लोग अपने काम से लौट रहे हैं, कोई बाजार जा रहा है तो कोई शाम को टहलने निकला है, और कहीं किनारे चार दोस्त बैठे हुए हैं। उनमें से एक बोलता है, भाई यार ये तो बहुत सीधा है, इतना भी क्या डरना, अरे एक बार ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा। सुनने में ये बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सी बात लगती है, पर सड़क के इसी किनारे एक जिंदगी के साथ पूरा परिवार हो जाता है तबाह। जी हाँ, आज है 26 जून, यानी मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय दिवस। इसका मकसद है लोगों को यह एहसास दिलाना कि नशा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिंदगी पर बुरा असर डालता है। नशा करने के बारे में सोचने से पहले एक बार उन माँ बाप का सोचना चाहिए जो आपके लिए पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देते हैं, यहाँ तक कि अपने वो सपने कुर्बान कर दिए होंगे उन्होंने जो आपके होने से पहले उनकी प्रायोरिटी हुआ करते थे, वो भाई बहन जिनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम हो, वो बच्चे जो आपकी राह देखते हैं, वो परिवार जिनके लिए आप सब कुछ हो। कैसा लगेगा उन्हें अपने ही दिल के टुकड़े को नशे में रेंगते हुए जिंदगी जीते देखना? बहुत ही भयावह है ये। बस ऐसी ही परिस्थिति को रोकने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। आपको बता दें 1987 में यूएन जनरल असेंबली ने यह दिवस मनाने का फैसला लिया था। इस दिन जगह जगह रैलियां निकाली जाती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक दूसरे को अवेयर किया जाता है, ऐसे गलत कामों से दूर रहने को कहा जाता है। जब भी कोई कहे एक बार ट्राई करो तो कह दीजिए उनसे कि आप भी एक बार ट्राई करिए नशा छोड़ने का। जी हाँ दोस्तों, गलत आदतों से बचना है और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुहर्रम की। दोस्तों जब भी मुहर्रम की बात होती है कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, क्या ये सिर्फ नए साल की शुरुआत है? दरअसल मुहर्रम सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं बल्कि इस्लाम में सच, इंसाफ और त्याग की याद दिलाता है। आपको बता दें मुहर्रम जो है वो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है जिसमें सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इसे इस महीने की 10वीं तारीख यानी आशुरा का सबसे ज्यादा महत्व है, यानी इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? दोस्तों करीब 1400 साल पहले इराक के करबला में एक ऐतिहासिक घटना हुई। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने सच और इंसाफ का साथ चुना, चाहे इसके लिए उन्हें और उनके साथियों को अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। आज भी उसी बलिदान को याद करते हुए मुहर्रम मनाया जाता है। इस दौरान लोग दुआ करते हैं और करबला की घटना को याद करते हैं, कई जगह जुलूस भी निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस्लामी त्योहार मुहर्रम से जुड़ी कुछ बातें। चलिए अब जानते हैं डिजिटल तकनीक और योग के बारे में, जिसे बताएंगे अविरल श्रीवास्तव।
1: योग भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं बल्कि मन को शांत रखने और जीवन में संतुलन बनाने का भी माध्यम है। सदियों से लोग योग को गुरु और शिष्य की परंपरा के माध्यम से सीखते आए हैं। लोग आश्रमों, योग केंद्रों और प्रशिक्षण संस्थानों में जाकर योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन आज तकनीक ने हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल दिया है और योग भी इससे प्रभावित हुआ है। अब योग सीखने और सिखाने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। डिजिटल तकनीक ने योग को पहले की तुलना में अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना दिया है। अब इसे एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहां योग सिखाने वाला कोई अच्छा प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है। कुछ वर्ष पहले उसके लिए योग सीखना कठिन हो सकता था, उसे किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता या फिर योग सीखने का अवसर ही नहीं मिल पाता, लेकिन आज उसके पास केवल एक मोबाइल फोन और इंटरनेट का होना ही काफी है। वह घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकता है, वीडियो देखकर अभ्यास कर सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार योग सीख सकता है। तकनीक ने दूरी की इस समस्या को काफी हद तक कम कर दिया है। जब हम किसी मोबाइल ऐप पर योग का वीडियो देखते हैं या इंटरनेट के माध्यम से लाइव योग की कक्षा में शामिल होते हैं तो उसके पीछे डिजिटल तकनीक ही काम कर रही होती है। यह तकनीक ऑडियो और इंटरनेट की मदद से प्रशिक्षक और विद्यार्थी को जोड़ती है। प्रशिक्षक एक स्थान पर होता है और विद्यार्थी कितने भी और कहीं भी हो सकते हैं, फिर भी वे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस तरह योग अब केवल किसी एक भवन या केंद्र तक सीमित नहीं रह गया बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचने लगा है। तकनीकी रूप से डिजिटल योग कई साधनों की मदद से काम करता है। मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन कक्षाएं और फिटनेस से जुड़े उपकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन माध्यमों में योग के अलग अलग आसनों, प्राणायाम और ध्यान की जानकारी दी जाती है। कई ऐप उपयोगकर्ता के अभ्यास का समय भी दर्ज रखते हैं और उसे नियमित रूप से अभ्यास करने की याद दिलाते हैं। इससे लोगों के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है। इसी वजह से आज बहुत से लोग अपने घरों में बैठकर योग सीख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार सीखना चाहता है और उसके हर चरण का प्रदर्शन देखना चाहता है

0: तो वह उसे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तनाव कम करने के लिए ध्यान करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग अलग मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध होती है। कुछ ऐप शुरुआती लोगों के लिए सरल अभ्यास बताते हैं, जबकि अनुभवी लोगों के लिए कठिन अभ्यास भी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह अलग अलग आवश्यकता वाले लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री मिल जाती है। आज कुछ आधुनिक प्रणालियां कैमरे की सहायता से यह समझने की कोशिश भी करती हैं कि व्यक्ति आसन सही से कर रहा है या नहीं। जब कोई व्यक्ति कैमरे के सामने अभ्यास करता है तो ये प्रणालियां शरीर की स्थिति को देखकर सुझाव देने का प्रयास करती हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई प्रशिक्षक सामने खड़े होकर छोटी छोटी गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है। हालांकि यह व्यवस्था अभी पूरी तरह प्रशिक्षक का स्थान नहीं ले सकी है, लेकिन अभ्यास को बेहतर बनाने में सहायता अवश्य कर सकती है। डिजिटल योग की सबसे बड़ी ताकत इसकी पहुंच है। यह अथकता नहीं है और समय की सीमाओं में बंधा नहीं रहता। जहां एक योग केंद्र में सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं, वहीं इंटरनेट के माध्यम से हजारों लोग एक साथ सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति सुबह अभ्यास करना चाहता हो या रात में, वह अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकता है। यही कारण है कि व्यस्त जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी योग करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, इसमें शरीर की स्थिति, सांसों का नियंत्रण और मानसिक एकाग्रता भी महत्वपूर्ण होती है। मोबाइल फोन या कंप्यूटर हमें जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशा यह नहीं समझ सकते कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की शारीरिक समस्या है या वह किस विशेष कठिनाई का सामना कर रहा है। कई बार लोग वीडियो देखकर अभ्यास करते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका उन्हें कभी पता भी नहीं चलता। इसलिए कुछ परिस्थितियों में प्रशिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक बना रहता है। यही कारण है कि योग और तकनीक एक दूसरे का विकल्प नहीं, बल्कि दोनों को मिलकर एक साथ बेहतर परिणाम देना चाहिए। तकनीक योग को अधिक लोगों तक पहुंचाती है, जबकि प्रशिक्षक अपने अनुभव और समझ से लोगों का सही मार्गदर्शन करते हैं। तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति को समझना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना और उसकी समस्याओं का समाधान करना अभी भी मानव प्रशिक्षकों की ही भूमिका है। भविष्य में योग और डिजिटल तकनीक का संबंध मजबूत हो सकता है। नई तकनीकों से लोगों को अभ्यास करने में अधिक सहायता प्रदान हो सकती है। योग सीखना पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन योग का मूल उद्देश्य हमेशा वही रहेगा, शरीर और मन के बीच संतुलन बनाना। तकनीक इस यात्रा को आसान बना सकती है, लेकिन अभ्यास करना, धैर्य रखना और योग को जीवन का हिस्सा बनाना अंततः व्यक्ति के अपने प्रयास पर ही निर्भर करेगा। यही संतुलन योग और तकनीक को वास्तव में उपयोगी बनाता है।
1: बहुत अच्छे से डिजिटल तकनीक और योग के बारे में बताया अविरल श्रीवास्तव ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान की आवाज सुनाई तो दे लेकिन उसका दर्द किसी को ना समझ आए, तो शायद इससे बड़ी बेबसी उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती। दर्द को समझने और ऐसा झेल रहे व्यक्तियों को अपनापन महसूस हो, इसके लिए हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आपको बता दें 1997 में यूएन जनरल असेंबली ने 26 जून को इस दिवस को मनाने का फैसला लिया। इसका क्लियर मैसेज है कि किसी भी इंसान के साथ टॉर्चर या इनह्यूमेन बिहेवियर को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दिन दुनिया भर में अवेयरनेस प्रोग्राम, डिस्कशंस और मूवमेंट्स चलाए जाते हैं। साथ ही जो विक्टिम्स यानी पीड़ित हैं, उन्हें कानूनी, मानसिक और सामाजिक मदद देने पर जोर दिया जाता है, जिन्होंने यातना झेली होती है उनके लिए। दोस्तों खुद ही सोचिए, ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है, फिर भी कोई प्रताड़ित रह जाता है। क्या उसे हक नहीं है सम्मान और सुरक्षा से डिग्निफाइड लाइफ जीने का? इस दिन ये फैसला लेना होगा कि हम एक ऐसी सोसाइटी फ्लरिश करें जहां हिंसा और क्रूरता के लिए जगह ना हो, हर इंसान को सम्मान मिले और लोग अपने राइट्स को जाने, ह्यूमन राइट्स को जाने। तो अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान

0: योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। अब बारी है उस सेगमेंट की जिसमें हम बैठते हैं रेडियो वेव्स के एरोप्लेन में और पहुंच जाते हैं एक रोमांचक जगह, क्योंकि कभी कभी कुछ शहर सिर्फ घूमने के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें किया जाता है महसूस। जरा सोचिए, शाम ढल रही हो, झील का पानी गोल्डन स्पार्कल सा चमक रहा हो, दूर किसी महल की परछाई पानी में उतर रही हो और ठंडी हवा मानो छूकर सब महसूस करवाना चाह रही हो। ऐसा माहौल जहां दिल को अनकहा सुकून मिल जाए और जिंदगी कुछ पल के लिए थम सी जाए। अगर आपने कोई ऐसा शहर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। जी हाँ, करिए अपनी आंखों को बंद और आपकी दोस्त दिशा ले चलती है आपको झीलों के शहर उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर का अपना एयरपोर्ट है जहां लगभग हर बड़े शहर से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। रेल से भी सफर सुविधाजनक है और सबसे बढ़िया सड़क के रास्ते पहुंचना चाहें तो राजस्थान की सड़कें, इमारतें और गलियां आपका मन मोह लेंगी। उम्मीद है आंखें बंद है और सब कुछ आप करेंगे इमेजिन। तो सबसे पहले चलिए चलें सिटी पैलेस, राजसी भवन, नक्काशीदार गलियारे और यहां से दिखाई देने वाली पिछोला झील। यकीन मानिए, कैमरा बार बार हाथ में आएगा। इसके बाद मजा लीजिए बोट राइड का इसी सुंदर झील में। और किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा है। झील और उसके बीच में दिखाई पड़ता लेक पैलेस और जग मंदिर ने तो मानो चार चांद ही लगा दिया। शाम होने को हो तो फतेह सागर झील पहुंचिए। यहाँ की ठंडी हवा, सड़क के किनारे की रौनक और डूबता सूरज, बस बैठकर कुछ देर इस पल को जीने का मन करेगा। अगर इतिहास और संस्कृति से लगाव है तो बागौर की हवेली जरूर जाइए। शाम का लोक नृत्य कार्यक्रम राजस्थान की रंगीन संस्कृति से आपका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा परिचय करवाता है।

और अगर पूरे शहर को एक साथ देखना हो तो पहुंच जाइए सज्जनगढ़ यानी मॉनसून पैलेस। वहां से दिखने वाला सनसेट उदयपुर की आपकी सबसे मेमोरेबल क्लिक्स में शामिल हो जाएगा। और इतनी देर सैर कर लिया तो भूख तो लगेगी ही, और वैसे भी उदयपुर आए और दाल बाटी चूरमा ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल खाइएगा, इसके साथ गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, प्याज कचौरी और मीठे में घेवर या मावा कचौरी जरूर टेस्ट करिए। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, झील किनारे बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है, तो ये भी करिएगा ट्राई। अगर आपको शॉपिंग का कीड़ा है तो उदयपुर की यादें जरूर अपने साथ ले जाइए, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि अरे दिशा, सामान तो हम ले लेंगे पर तुम अच्छी मार्केट तो बताओ। तो भाई पूरी रिसर्च करके लाई हूँ आपके लिए। शॉपिंग के लिए हाथी पोल बाजार आप पहुंच सकते हैं, बड़ा बाजार जा सकते हैं या बापू बाजार जरूर विजिट करिएगा। यहाँ आपको राजस्थानी हस्तशिल्प, मिनिएचर पेंटिंग, कलरफुल कपड़े और हैंडबैग्स काफी प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो सितंबर से मार्च के बीच का समय काफी सही रहता है, गर्मी कम रहती है। और इतिहास, प्रकृति, स्वाद, संस्कृति और सुकून से भरा उदयपुर अगली ट्रेवल लिस्ट में नाम ऐड करिएगा जरूर। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गाना।

अब बारी है उस सेगमेंट की जिसमें हम बनाते हैं अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग, ऐड करके नए नए अट्रैक्टिव वर्ड्स। जी हाँ, बात हो रही है फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट शब्दावली की, जिसमें हम जानते हैं चार अंग्रेजी और एक हिंदी के शब्द। ध्यान से सुनिएगा, नोट या रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे लगातार आप इसका इस्तेमाल करिए और बना लीजिए अपनी वोकैब्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग। पहला वर्ड है टेनेशियस, यानी दृढ़ निश्चयी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग है इसकी TENACIOUS, और इसका सिनोनिम है डिटरमाइंड और एंटोनिम है वीक। सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं शी इज अ टेनेशियस स्टूडेंट हु नेवर गिव्स अप, यानी वह एक दृढ़ निश्चयी छात्रा है जो कभी हार नहीं मानती। दूसरा शब्द है पर्टिनेंट, यानी प्रासंगिक। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग है PERTINENT। सिनोनिम है इसका रेलेवेंट और एंटोनिम है इररेलेवेंट। और वाक्य में हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज आस्क ओनली पर्टिनेंट क्वेश्चंस, यानी कृपया केवल प्रासंगिक प्रश्न ही पूछें। तीसरा शब्द है एक्रिड, यानी तीखा। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग है इसकी ACRID। सिनोनिम है इसका हार्श और एंटोनिम है प्लेजेंट। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं द मेडिसिन हैड एन एक्रिड टेस्ट, यानी दवा का स्वाद बहुत ही तीखा था। चौथा शब्द है इनेप्ट, यानी अयोग्य। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग है इसकी INEPT। सिनोनिम है इसका इनकम्पिटेंट और एंटोनिम है स्किल्ड। वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं ही वॉज इनेप्ट एट हैंडलिंग दी सिचुएशन, यानी वह उस स्थिति को संभालने में अयोग्य साबित हुआ। तो ये थे चार अंग्रेजी के शब्द, और अब बारी है आज के पांचवें यानी हिंदी शब्द की। वाग्मिता, यानी प्रभावशाली बोलने की कला। ये एक संज्ञा है, वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी वाग्मिता ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको मेरे यानी दिशा श्रीवास्तव के साथ कैसा लगा, लिखकर बताइए हमें हमारी ईमेल आईडी yuvvani@gmail.com पर। करिए कमेंट फेसबुक और इंस्टा की युववाणी रील पर, और व्हाट्सएप पर कर दीजिए मैसेज 830-321-9911 पर। ध्यान रखिएगा, मैसेज टाइप करने के पहले कैपिटल लेटर्स में AKB जरूर टाइप कर दें। चलिए अब सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो बनाएगा हमारे मूड को एकदम से फ्रेश।

आप सुनते रहिए गाना और हम आपको बताते हैं कि कल क्या होगा खास आपके लिए युववाणी में। चर्चा में बात होगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस की। हमारी धरोहर में जानेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में। आर्थिक जगत में बात होगी कोलेंडिंग की। और आज की तरह कल भी रहने वाली है आपकी शाम एकदम मजेदार। आपको बता दें आज आपने युववाणी का सफर तय किया अपनी दोस्त दिशा श्रीवास्तव के साथ। आप सदैव रहिए मुस्कुराते, मिलेंगे नए अंक में नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: युवावाणी कार्यक्रम आकाशवाणी की अयोध्या FMC प्रसारित किया गया। समय मिलाइए शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। बस कुछ ही पलों में सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम इस पहले विज्ञापन के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
2: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने ये लोकगीत सुना और अब जो लोकगीत आप सुनने जा रहे हैं वो श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी की आवाज में है। और इसके पहले आपने खेमटा सुना था, उसे स्वर दिया था अजय कुमार यादव ने।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो

0: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेड़िए मारा।
1: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
0: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए अनिता श्रीवास्तव की आवाज में ये लोकगीत जो एक कहरा है।

0: कोयलिया कोरवा छोड़ी दे बालमा ओ कोरवा छोड़ी दे बालमा ओ कोरवा छोड़ी दे बालमा।
1: और अब लीजिए सुनिए रामचंद्र सिंह और उनके साथियों से ये लोकगीत जो एक किसानी गीत है।

इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लोकगीत हम आपको अब से कुछ ही देर के बाद शाम 6:30 से भी सुनवाएंगे गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में। इसके अलावा लोकगीत आप दिन की सभा में 12:30 पर भी सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम में। यह है आकाशवाणी का अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर।

0: घरों के आसपास के गड्ढों में पानी एकत्र ना होने दें। यदि संभव हो तो रुके हुए पानी में डीजल या मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल दें या फिर डीटीटी का छिड़काव करें। ऐसा करने से मच्छरों की संख्या में कमी आएगी। कूलर का पानी भी हर सप्ताह बदल दें, जिससे जानलेवा मलेरिया और डेंगू बुखार से हम सबका बचाव संभव हो सकेगा। फोन पर अपनी बात कृपया संक्षिप्त रूप में करें। हो सकता है आप ही से कोई अन्य व्यक्ति अति आवश्यक बात करने के लिए फोन पर आपका इंतजार कर रहा हो। कोई भी धर्म हमें बैर करना नहीं सिखाता, बल्कि विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देता है। हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हम सब एक हैं। सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाए। दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी परवाह किए बगैर हम उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, यही सुसंस्कृत व्यक्ति की पहचान है। यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 6:05 से अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कर लीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए

0: एक पारदर्शी पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th APEC level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: The Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945 to simplify the procedure for obtaining permission for import of drugs for examination, test or analysis. The Ministry said that the amendment introduces an acknowledgement-based system for import of all drugs in small quantities for analytical and non-clinical testing purposes. The simplified procedure shall not be applicable to certain drugs belonging to the categories of sex hormones, cytotoxic drugs and beta-lactam drugs. The UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Teeth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations emerged of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Teeth Kshetra Trust. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced Operation Amistad, under which 2 Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent assistance to support post-earthquake relief efforts. Amistad means friendship in Spanish. In a social media post, Dr. Jaishankar said, the assistance contains an Indian Army field hospital unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical equipment, including 2 Bhishma cubes. He stated that India is committed to support the government and people of Venezuela in this difficult time. The External Affairs Minister today interacted with a group of journalists from various European countries in New Delhi. The minister spoke to them about the profound transformations underway in India, the current state of flux the world is in, and the growing convergences between India and Europe. India, along with 34 nations, signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence technologies at the second PAC Silica Summit in Washington. India joined the initiative in February this year

के जहन में भी होगी कोई ना कोई, शक्ल तो आपके जहन में भी होगी कोई ना कोई, बन जाएगी बस यूं ही तस्वीर कभी ना कभी। और अब ये रहा अगला गाना शाम सुहानी प्रोग्राम का। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में पहला गाना आपने सुना नीति मोहन की आवाज में।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फूलों से करके प्यार ये इज्जत मिली है मुझे, फूलों से करके प्यार ये इज्जत मिली है मुझे, चूमे कदम है बहारों ने जिधर से गुजरे हैं हम।

0: मोहम्मद रफी के गाए इस गाने के साथ ही शाम सुहानी प्रोग्राम समाप्त करने की अपने रेडियो मित्र अमरजीत को अब दीजिए इजाजत। आप सब अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बॉलीवुड फिल्मी गानों का ये प्रोग्राम अभी आपने सुना शाम सुहानी आकाशवाणी के अयोध्या FM से। शाम के 6:20 होने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में दिल्ली से संस्कृत में समाचार होंगे।
1: नियम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रीय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु US ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसंघर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तर 2000 चतुर्दशाधिक 2000 पर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्यापेक्षया 14,000 26,000 पर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषित मादक द्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादक द्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अंकैः ज्ञायते। मादक द्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल

0: ब्यूरो इत्यनेन मादक द्रव्यानां अपराध सम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थं अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितम् जनान्दोलनम् जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तीकरण राज्य मन्त्रिणः बीएल वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे एफआईआर इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्तेय संबंधिनां आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमंत्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य एसआईटी दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिंगटन नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ़ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैक हेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयम् दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिम् संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागम् संस्मृतवान्। सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते संदेशे तेनोदीरितम् यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनम् सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढ़तया स्थातुम् अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयम् यत् राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद निजामुद्दीन ओखला महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मुहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अस्य मासस्य चतुर्विंशति पञ्चविंशति दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितः।

0: कृतवान्। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो ह्यून् इत्यनेन सह विस्तृताम् उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्याम् अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापार निवेशौ वित्तीय सहयोगः रक्षा सुरक्षा प्रविधयः नवाचाराः संस्कृतिः शिक्षा तथा च परस्पर जनसंपर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुं उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेश मंत्रालयानुसारं द्वाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया संबंधेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक संधिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं संपर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टीएन चेन इत्येतम् एकविंशति सप्तदश षड्विंशति चतुर्विंशति अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।
1: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। 6:30 हुए हैं। अब शुरू करते हैं गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में। कुछ लोकगीत आपको सुनवाने जा रहे हैं पहले इस विज्ञापन के बाद।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: पहले सुनिए अभिनंदन शुक्ला और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: और अब ये सुनिए चंचल शांडिल्य की आवाज में ये लोकगीत।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना केडीए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये बन्ना, रीना टंडन की आवाज।

इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। बस अब आप सुनेंगे खेती किसानी का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आए आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: पंचो जय हिंद। पंचो देखो, हम सभी गुरु बचरू पालित है ना, जब हम पशुओं मदे हमें सबका हरा चारा की जरूरत पड़ता है। भाई देखो, यही से इतनी अपने सबका हरेरी के जरूरत है। जैया हम सब भाई अपन खान पान भी बढ़िया रखी, और भाई देखो भाई पानी के तो ऐसे थी खास के जरूरत है यह मौसम में। और यही मारे अपने जो अपन खेती भी है वो पशुपालन पे भी आधारित है। यही सब बात इनका ध्यान में रखत में हमें सबका अपने पशुओं का स्वस्थ रखे का है। जहिया हम सब मन से पूरा उत्पादन ले सके। पंचो ये नहीं, उत्पादन के बतिया की जाना तो मन के खान पान भी बढ़िया हो के चाहिए, और लागत भी अपने सबके कम हो के चाहिए। लागत के बात कीजिए तो लागत में कम ही लावे ताई साल भर हरा चारा का प्रबंध करम बहुत जरूरी है। और ये हम पंच के कर्तव्य बनत है जब हम गुरु बछरू पालित है। और हरा चारा अपन पशु हमारा पंच जानत है कि बड़े ही चाव से खाते हैं। जैसे हम सब भाई अपन संतुलित भोजन ली थी हर मेरे के, और बहुत मजा आवत है खाए में, ठीक वैसा नहीं नहूँगा और आसानी से पचावत भी है। ये नहीं, हरा चारा में विटामिन ए कैरोटीन प्रोटीन और खनिज लवण ज्यादा मात्रा में पावा जाता है, जो पशु के प्रजनन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़वार थाई ज्यादा जरूरी है। इससे फायदा ये है कि अपन पशु भाई देखो खान पान बढ़िया रहे तो समय से गर्मी मावत है, और दुई ब्यात के बीच के अंतर भी कम हो जाता है। और यह नहीं, साल भर हरियर चारा खवाए से पशु के विकास भी अपने बढ़िया होता है। हाँ पंचो, अगर चारा में दुई दाल वाली घास यह है तो चारा में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बढ़िया होते है, साथ ही पाचकता भी बढ़िया होते है। एक अलावा जिसे हम पंच लगा सकी थी बरसीम रिचका लोबिया, ये चारा के फसल में आवा थी। और यही मारे हम पंच का चाहिए कि ज्यादा उपज दे वाली और कईयों दफा कटाई वाली उन्नत फसल उगाई जा सकत है, जैसे जई है बरसीना है सुडान घास शंकर नेपियर, ये सब हम पंच लगाई जहिया जो है अपन हरियर चारा उगाई और अपने जो गुरु बछरू पाले हैं मन का दी। खेती के चारी वारी चारा वाला पेड़ हम पंच का जरूर लगावे के चाहिए, जिसे बढ़िया मात्रा में चारा लीन जा सकते है। और प्रति भूमि में कम समय में लिए वाली व जल्दी बढ़े वाली फसल जैसे जई है मक्का है, ये सब उगा के अपने पशुन बदे हरियर चारा का व्यवस्था की जा सकता था। अगर हम पंच बहुफसली चारा की खेती करी तो हम जानते हैं कि पूरा लाभ मिले। साथ ही देखो बात के ध्यान में रखा है कि सीमित भूई माने कम भूई में कम पानी में भूई में ज्यादा चारा हमें सबका लिए का है। स्वास्थ्य का देखत वह शक्तिदायक चारा का उपलब्धता होए का चाहिए। यस चारा का प्रबंध करी पंचो, जैसे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुए। भाई देखो हम सभी गुरु बछरू काय पाली थी, जैया हमारे सबका दूध का उत्पादन बढ़िया हुए और पशु के स्वास्थ्य भी अपने बढ़िया रहे। साथ ही ध्यान में ही रखा है कि चारा के किसी में सुधार के साथ साथ अपने पशु का चारा खवावे के विधि में भी सुधार करे के पड़े, जैसे पशु के जो भी पोषक तत्व है उसका जरूरत है वो आसानी से पूरी की जा सकते। लेकिन जब हम पंच हरियर चारा के प्रबंधन करब ये तब संभव हो सकत है। और ये तो बात रही पशुओं के, लेकिन साथ ही साथ जो ये सेती

0: जोन अपन गन्ना के फसल पंचे लगाए ओमन कैसे का करे के वह सब बात इनका ध्यान में रखे के कहे से गन्ना अपने पंचन का नगदी फसल है ये हमारे बात कहीं अपने पंचायती में अठी है। गन्ना फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर बतावत है श्री पवन कुमार तिवारी जो उनकी सेवानिवृत्त है गन्ना विकास निरीक्षक है। चलो इन्हीं से जाना जाए। पंचो हम सभी अपने पंचायती मां रिकिम रिकिम के विशेषज्ञ का बलावा करे अपने पंचन का रिकिम रिकिम के जानकारी देवे बदे आज ऐसे अपनी पंचायती मामा है श्री पवन कुमार तिवारी जो उनकी सेवा निवृत्त है गन्ना विकास निरीक्षक रहे आप आपके पंचायती में स्वागत है। आज जैसे हमारा विषय है कि गन्ना फसलों में समसामयिक कार्य तो सबसे पहले आप हमारे पंचन का बतावे ये जो मौसम है मौसम का देखत भय गन्ना के फसल में हमारे पंचन का समसामयिक कार्य काव काव करे का है।
1: समसामयिक कार्य में किसान भाइयों का ये समय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। एक तरफ धान की नर्सरी डालना और धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करना, दूसरी तरफ जो गन्ना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है ये, तो इसकी भी देखभाल करना बहुत जरूरी है। किसान भाई धान की फसल और फसलों के साथ साथ गन्ने की फसल तो भाई देखभाल करेंगे तभी अच्छी को नकदी फसल मिल जाएगी, तो इसलिए गन्ना जो बोया गया है एक तो बसंत काल में बोया गया है और दूसरे एक पहले बोया गया शरद काल में।
0: अच्छा,
1: तो शरद काल का गन्ना बढ़ गया है, शरद काल वाला गन्ना बढ़ गया है, तो उसमें किसान भाइयों को देखना चाहिए कि कहीं उसमें खरपतवार तो नहीं है, अगर खरपतवार हो तो उसकी गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करके मौसम गर्म है धूप ज्यादा हो रही है तो सिंचाई जरूर करना है, हर 15-20 दिन के उपरांत सिंचाई कर दें और यूरिया की अंतिम टॉप ड्रेसिंग जो बाकी बची हुई यूरिया इस महीने में अनिवार्य रूप से कर दें और इस समय जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हो जाएगी तो गन्ने में जो ब्यांत होता है फुटाव होता है जिसको कहते हैं किल्ले निकलते हैं वो निकलने का इस समय बहुत बढ़िया समय है और बहुत बढ़िया निकल जाएगा। आज साथ किसान भाइयों को एक ही भी देखना है कि खेत में खरपतवार न रहे, खरपतवार रहने से बहुत नुकसान होता है। एक तो जो वो यूरिया डालेंगे कोई भी खाद डालेंगे वो भी खरपतवार ले लेता है और दूसरी तरफ किसान भाइयों का जो फसल है वो कमजोर हो जाती पीली हो जाती दो नुकसान होता है, तो प्रयास करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए। अगर गन्ना छोटा है और बसंत काल वाला है तो शरद वाला तो बढ़ गया है उसमें गुड़ाई करने में अब दिक्कत है, लेकिन जो बसंत काल में है उसमें गुड़ाई करके खरपतवार को खत्म कर दें।
0: उन पंचे अपने गन्ना के खेते में उरुद बोए हैं मूंग बोए हैं लोभिया बोए हैं ये मन कैसे का उनका सावधानी बरता है का कैसे का करे का बताओ।
1: हाँ, तो अब यही लास्ट समय है ना, जो उरद है मूंग है लोभिया है उसकी फलों की तोड़ाई करके जो फलियां है तोड़ करके और उसके अवशेष को उसी में गुड़ाई करके दबा दे सड़ जाएगी तो वो हरी खाद का काम करेगी और साथ साथ देखिए गन्ना चूंकि मीठा होता है इसलिए उसके कीड़ा मकोड़ा रोग भी उसमें आते हैं।
0: बिल्कुल सही आप चेताए।
1: अच्छा। कोई कीट बहुत ज्यादा का प्रकोप नहीं है लेकिन सचेत रहने की जरूरत है और उसमें सचेत रहने में जो इस समय चल रहा है इस समय एक तो दीमक तो 12 महीने लगता है कभी भी में लग सकता है, तो दीमक के लिए जरूरी है कि बोते समय या आगे पीछे जब भी लगे इमडा क्लोराइड का छिड़काव कर दिया जाए।
0: अच्छा।
1: और दूसरा एक कीड़ा होता है अंकुर बेधक,
0: वो क्या पहचान है उसे कैसे निजात मिल सकता?
1: तो अंकुर बेधक जो है वो जड़ों में पहुंच करके उसके जो गोफ होती है जहां से जड़ निकलती है कल्ला निकलता है उसको काट देता है तो गोफ ऊपर की सोख जाती है, तो उसके लिए भी कार्बोफ्यूरान 3G 25 किलो पर हेक्टेयर। अच्छा। की दर से जड़ों पर भुड़काव करके, लेकिन जब भुड़काव करें जब खेत में नमी रहे। अच्छा। क्योंकि ये सेंसिटिव पॉइजन है ये पूरे पौधे में जड़ से जाकर के ऊपर तक चला जाता है, तो नमी रहने पर ये घुलता है, पीरियड में इसको डाल देने से जो ये है अंकुर बेधक नियंत्रण में आ जाता है।
0: अच्छा, एक कब हमारे पंचन का दवाई का उपयोग करे का है, बोवे के कितना दिन पर या बोवे से पहले कैसे कब करे का?
1: अब देखिए ये अंकुर बेधक है जब देखें कि खेत में 10-20 अंकुर बेधक का गोफे सूख रही हैं।
0: अच्छा।
1: जब दिखाई पड़े तब इसका प्रयोग कर लेना चाहिए।
0: अच्छा, बिल्कुल। अलावा
1: एक कीट आता है पारिल्ला।
0: अच्छा,
1: पारिल्ला है
0: एक पहचान का है,
1: पारिल्ला है उसके खाकी कलर के उसके पंखे होते हैं, दो पंखे होते हैं पीछे एक गुच्छा नुमा पैर लगा होता है। अच्छा। और चोंच नुमा होता है पारिल्ला,
0: ये का नुकसान करता है?
1: ये पारिल्ला जो है गन्ने के खेत में जाकर के पत्तियों पर अपने सूंड से उसका रस चूस लेता है। अच्छा। और पौधे कमजोर हो जाते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर 10-20 ज्यादा ना दिखे पारिल्ला तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पट्टी पलट कर देखेंगे तो उसमें परजीवी भी लगे हुए हैं उनके खाने के लिए, तो परजीवी

0: रिल्ला के नीचे वो भी परजीवी भी अपना अंडा दे देते हैं, तो वो निकल निकल के उनको खाते रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और उनको खत्म कर देते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा ही कीट दिखा रहा है और उसमें कीटनाशक डाल दिया गया, तो हमारा परिल्ला के साथ साथ परजीवी भी खत्म हो जाता है। अगर परजीवी उनके कम है तो ट्राइकोडर्मा कार्ड आता है उसको लगा दें। कार्ड लगा दें और ईश्वर प्रकृति उनको नियंत्रण करने के लिए ऑटोमेटिक एक सिस्टम बना रखा है कि उनके परजीवी रहें। हाँ, ये है, देख लेना चाहिए कि परजीवी पर्याप्त मात्रा में खेत में रहना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो उसको नियंत्रण करते रहते हैं और इस समय परिल्ला खेत में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं।
1: अच्छा।
0: ये तो केवल सावधानी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ।
1: एकरे अलावा और कौन रोग लगे के संभावना?
0: एक जब गन्ना बड़ा हो जाएगा तो इस समय नहीं, जुलाई अगस्त में तना बेधक होता है।
1: अच्छा।
0: स्टेम बोर जिसको कहते हैं, उसको भी रोकने के लिए मोनोकोटोफास है, कार्बोफ्यूरॉन 3G है, जब जमीन में डाल देंगे ना तो नीचे से जाकर के ऊपर तक वो पौधे में चला जाएगा और उसको मार देगा।
1: हमारे पंचे कैसे जाने की तना बेधक कीट लगा है, एक पहचान का है, एक उपचार?
0: तना बेधक कीट ये होता है कि जब अगौले के पास जाओगे देखोगे और अगौले के नीचे देखोगे।
1: अच्छा।
0: तना माने बीच में, तो उसमें एक छोटा सा छेद दिखाएगा, जैसे बंदूक की गोली का छेद होता।
1: अच्छा।
0: है वैसे छेद दिखेगा और उसको तोड़ करके जब फाड़ेंगे तो उसमें छोटा सा उसमें कैटरपिलर दिखाई देगा।
1: अच्छा। पेड़ी वाला गन्ना लाग है, ये मन ऐसे थी एक प्रबंधन हमारे पंच का कैसे?
0: हाँ, किसान भाई थोड़ा सा सौतेला व्यवहार कर देते हैं, जैसे कि जो बावक गन्ना होता है उसमें गुड़ाई खाद हर चीज समय समय देते रहते हैं। पेड़ी गन्ना का कहते ये तो होबे करेगा, आज नहीं कल, तो उसको लापरवाही कर देते हैं। लेकिन अगर प्रयास किया या तो पेड़ी गन्ना भी बावक के बराबर उपज दे सकता है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसकी भी बढ़िया गुड़ाई कर दें, इसकी भी सिंचाई बराबर होती रहे, और पेड़ी गन्ने में पर्णीय छिड़काव, यूरिया जैसे महंगी हो गई है ना, काफी महंगी है, तो आप सब जानते हैं, किसान भी जानते हैं कि पौधे जो हैं पत्तियों से भी भोजन बनाने का काम करते हैं। तो पत्तियों पर जो जमीन में यूरिया मान लीजिए 10 किलो प्रति बीघा डाली गई, और जो जमीन में डाली जाती है वो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन आधा से ज्यादा लीच कर जाती है, उड़ जाती है वायुमंडल में। लेकिन अगर पानी में घोल करके पर्णीय छिड़काव कर दिया जाता है तो केवल 3 किलो के कच्चा बीघा माने 30 किलो पर हेक्टेयर डाल करके पर्णीय छिड़काव कर दिया जाए तो फिर फसल को बहुत फायदा होता है और फसल की बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है। उसके साथ में अगर थोड़ा सा कीटनाशक भी मिला लें, जैसे क्लोरोफास भी मिला लें, तो एक तरीके से प्रबंधन हो जाता है।
1: बिल्कुल, प्रबंधन हो जाता है तो अपन फसल जो है अच्छी हो जाता है। अगर फसल अच्छी हो जाता है तो हमारे पंचन का जरूरत पड़ता है बाजारी में लाई जाएगा, कैसे उनके बिके का है, कौनी मेर से उनका गन्ना जाएगा और भावताओं से जाएगा है। तो ओके बदे हमारे पंचन का विशेष ध्यान दिए का है,
0: जैसे कि इस समय गन्ना विभाग गन्ना सर्वेक्षण करा रहा है।
1: जी।
0: सर्वेक्षण का मतलब आंकड़ा ले रहा है कि आपके पास कितने क्षेत्रफल में गन्ना है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी हिसाब से आपको गन्ना आपूर्ति के लिए पर्चियां बनेगी। किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि एक दिन पहले दो दिन पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि इस दिन आपके गांव का गन्ना सर्वेक्षण होगा, उस दिन खड़े होकर के अपना खेत का सर्वे करा करके अपने नामांकित करा ले। दूसरी बात यह है, एक घोषणा पत्र आता है कि हमारे पास इतना गन्ना है, इतने क्षेत्रफल में गन्ना है।
1: अच्छा।
0: ये वैरायटी गन्ना है, वो भर करके सुपरवाइजर को दे देंगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात, सब गन्ना किसानों को जो गन्ना बिकता है उसका गन्ने का मूल उनके बैंक खाते में जाता है। अगर बैंक खाता गड़बड़ हो गया, जिसके खाते में जाना चाहिए दूसरे खाते में चला जाता है, तो अपना देख लें, अगर बैंक खाता गड़बड़ हो तो उसको भी सही करा लें, मोबाइल नंबर सही करा लें, क्योंकि अब पर्ची जो है मैसेज के द्वारा आती है, मोबाइल पर ही पर्ची आती है, अलग से नहीं जाती है। और साथ साथ विभाग हर प्रकार की जानकारी भी मोबाइल पर देता रहता है कि कौन काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और असली बात है, जो नए सदस्य हैं जिन्होंने पहली बार गन्ना बोया है उनका गन्ना कैसे भी कहेगा, तो वो भी गन्ना समिति जा करके अपना नया सदस्य बन जाएं, अपनी खेतौनी दे दें और 221 रुपया सदस्यता शुल्क है इसको जमा कर दें, तो उनकी खेतौनी भी नया सदस्य बन जाएंगे और उनको पर्ची मिलेगी। और अगर मान लीजिए किसान भाई का दो गांव में खेत है, तीन गांव में खेत है, पाही कास्त होता है ना, उसमें भी गन्ना बोया, इसमें भी गन्ना बोया, तो सर्वेयर को पता नहीं रहता है कि गन्ना कहाँ कहाँ बोया है, तो बता दें कि हमारा इस गांव में भी है, उस गांव में भी, वहां पर है, और सब गांव का सर्वे करा करके और सब

0: गांव की खेतौनी दे दें, तब विभाग उसको फीड कर देगा, उसी हिसाब से उसका रकबा लग जाएगा।
1: बिल्कुल रकबा लग जाए, लेकिन चला चला आप हमारे पंचन का अपने वारी से का सलाह दिया चाहते हैं बताओ चले थोड़ा।
0: हम किसानों को यही कहेंगे, उत्तम खेती कम नुकसान, गन्ना बोवे चतुर किसान।
1: वाह क्या बात कहें श्री पवन कुमार तिवारी जी, जो आप सेवानिवृत्त रहे, गन्ना विकास निरीक्षक रहे, आप आए हमारे पंचन का गन्ना फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर पूरा जानकारी दी एक बदे आपका पंचायती की वारी से और आकाशवाणी परिवार के वारी से बहुत बहुत धन्यवाद। पंच देखो अभी के आप सुनिन गन्ना फसलों में समसामयिक कार्य यह विषय पर बताओ रहे श्री पवन कुमार तिवारी भैया, तो हम जाने थे कि पंचे सुनिन हुई उनका निक जरूर लागो, लेकिन बात बत कहीं होत रहे पंचन से एक संदेश है वकरे पहले वकरे बाद में पंचन से फिर मिली था।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते,
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
1: पंचो देखो एक दफा फिर आप सबके बीच में आए गए, लेकिन पंचो आज अपने सभी एक रेडियो रिपोर्ट सुना जाए आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत विषय पर आयोजित कृषक गोष्ठी है और कृषक चौपाल पर आधारित ई रेडियो रिपोर्ट है, एक वाचन और संकलन के आलोक कुमार गुप्ता भैया, चलो इस सुना जाए।
4: दिनांक 25 जून 2026 को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत के तहत विशाल किसान पंच के साथ गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान एवं विशिष्ट अतिथि श्री सूर्य प्रताप शाही माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा,
5: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जो नेतृत्व आप प्रदान कर रहे हैं विगत एक सवा वर्षों से अनुकरणीय है और रोज नए नए आयामों पर चर्चा माननीय कृषि मंत्री जी के साथ होती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव है इस बात का।
4: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए अपनी बात कुछ यूं कही,
6: दुनिया की हर चीज फैक्ट्रियों में बन सकती है लेकिन भोजन फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता, अन्न फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता, फल और सब्जी फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता। आज रोड मैप उत्तर प्रदेश का हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया और हम रोड मैप का मतलब है खेती में क्या क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से बढ़ते हुए तापमान में, सूखे के बढ़ते दिन, कम होता पानी, जलवायु परिवर्तन, खेतों में किसानों के बीच उनसे बात करें, वहाँ काम करें, वहाँ देखें, वहाँ समझें, वहाँ समझाएं। कृषि मंत्री ये थोड़ी एक भाषण दिया, माल फूला पहन फूल माला पहनी और साल श्रीफल लिया और निकल लिए काजू किशमिश खा के। कृषि मंत्री जब तक धान के खेत में ना उतरे और धान की रुपाई ना करे, जब तक मखाने की खेती ना देखे, जब तक किसानों से बात ना करे, तब तक वो कृषि मंत्री सही अर्थों में कृषि मंत्री नहीं है। आज खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आए, मैं भी गांव में पैदा हुआ, मुझे पता बचपन याद, मैंने खेत में हल चलते थे तो उराई की है, उराई की अपने हाथों, पहले जो आदमी तो हल चलाता था, बच्चे या महिलाओं से कहते तुम उड़ो उड़ाई, लेकिन धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे क्योंकि वही तो हमें अन्न देती है, लेकिन धीरे धीरे ये भाव बदल गया, अधिक अन्न पैदा करने की चाह में हम इसी धरती माँ के साथ अन्याय करने लगे, खाद डालो कितनी भी डालो, दवाइयां छिड़को, पेस्टिसाइड डालो, मैं खाद डालने का विरोध करने नहीं आया, खाद की व्यवस्था भी करी है सरकार ने, ऐसा नहीं है कि हम इसलिए आ गए, लेकिन मैं ये चेताने आया हूं कि अगर ऐसे ही हम खाद की मात्रा बढ़ाते गए तो एक दिन ये धरती अन्न पैदा करने से ही इनकार कर देगी, ऊसर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। आप बताओ मेरे किसान बहनों भाई, ये धरती केवल अपनी

0: इसमें आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे उनका हक नहीं है क्या? चार पीढ़ी के बाद पांच पीढ़ी के बाद अगले धरती बंजर होगी, क्या कर लोगे आप? धरती बीमार हो रही है, धरती में पैदा हुआ अन्न फल फूल वो भी बीमार है और वो खाने वाले आदमी भी बीमार हो रहे हैं। और आज विचार करने का समय है हम कैसे संतुलित खाद का प्रयोग करें, जितनी जरूरत उतना प्रयोग करो ना भाई।
1: कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को मिट्टी की जांच एवं आने वाले समय में तमाम प्रकार के सुधार को सचेत करते हुए कहा।
0: खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कुमारगंज विश्वविद्यालय में आने का निर्णय किया और जहां तक मुझे जानकारी है पहली बार भारत सरकार का कोई कृषि मंत्री इस आचार्य नरदेव कृषि विश्वविद्यालय में पधारा है। खेती के अनेक विधाओं किसानों के साथ संवाद करते हुए और भारत के हर किसान तक पहुंचे, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गोपालक किसानों के साथ, पशुपालन महाविद्यालय के भीतर प्राकृतिक खेती के लिए जहां प्राकृतिक खेती के हमारी परियोजना काम कर रही है वहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए एकीकृत प्रणाली, साथ साथ में आके मखाना की खेती का भी अवलोकन किया और इसके अलावा हरी खाद के रूप में जो हमारे पूर्व ढांचे का इस्तेमाल करते थे। इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 60,000 क्विंटल बीज ढांचे का प्रबंध करके और हर जनपद के भीतर उपलब्ध कराया और इसलिए कराया कि रासायनिक खेती का क्या दुष्प्रभाव हुआ है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कम हुई है, उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। और इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया कि हम आपको ढेका बीज उपलब्ध कराएं, बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों के भीतर लगाई है। आज खुद माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों से धान लगाई, लाइन सोइंग किया, लाइन सोइंग करने से भी हमारी फर्टिलाइजर की जो मात्रा होती है वो घट जाती है, हमारे पास उसको यूरिया जब डालते हैं तो लाइन सोइंग में डालने के कारण यूरिया भी कम होती है, साथ साथ में उसकी बढ़त बढ़वार ज्यादा होती है और पैदावार भी उससे हमारी बढ़ती है। हमको इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाना, सीधी धान की बुआई के कार्यक्रमों को आगे की ओर चलाया जाना।
1: कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा के डॉक्टर पंकज कुमार सिंह,
2: हम किसान भाइयों को प्रेरित करते हैं कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आइए, प्राकृतिक खेती से हमारी लागत भी कम होती है और हमें एक गुणवत्ता युक्त उत्पाद भी मिलता है, गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिल जाने से हमें मार्केट में जो उसका प्राइस मिलता है उससे हमारे किसान भाइयों की इनकम भी बढ़ती है।
1: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सीताराम ने किसानों को सचेत करते हुए कहा,
3: हमारे पूर्वानुमान आए हैं 28 तारीख से मौसम में परिवर्तन होगा और 29-30 के आसपास यहाँ बारिश का क्रम शुरू होगा जो लगभग एक हफ्ते तक चलने की संभावना है। अपनी उम्मीदों को नहीं खोना चाहिए क्योंकि इस बार अल नीनो वर्ष है और अल नीनो जब प्रशांत महासागर में डेवलप होता है तो उस वर्ष मानसून का चक्र जो है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है और उसका पहला जो आउटकम हमारे सामने आया है वो देर से आंसे का मानसून का होना है, विलम्ब से मानसून का आना, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो मानसून है पहले 11 से 14 आता था 2000 के पहले और अब 14 से 24 के बीच हो गया है, काफी कम बारिश हुई है। ऐसे में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं कि आप मिलेट की खेती, मोटे अनाज की खेती की तरफ अपने को उन्मुख करें और इसके साथ साथ कम पानी वाली फसलें, धान की फसलों में भी लंबी अवधि की प्रजातियों का चयन न करके मध्यम और कम अवधि की प्रजातियों का चयन करें, ये किसानों के लिए अच्छा होगा और ऐसे में हमारे जो बीज अनुभाग है उसके अंतर्गत बीज उपलब्ध है, चाहे डीआर 97 हो, शुष्क सम्राट हो, हमारे पास 98 दिन से लेकर के 115 से 20 दिन 20-64, 20-65 एनडीआर ऐसी प्रजातियां हैं जो मध्यम अवधि की है, 115 से 120 दिन में हो जाती हैं, तो 98 से लेकर के 120 दिन की अवधि की प्रजातियों का चयन किसानों के लिए अच्छा रहेगा और विश्वविद्यालय द्वारा जो भी प्रजातियां विकसित की गई उनके पर्याप्त बीज भी हमारे भंडार गृह पे उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों को चाहिए कि हमारी जो खेती है वो परंपरागत खेती हो लेकिन उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक भी हो, ये बारिश कम हो रही है तो आप लंबी अवधि की प्रजातियों का अगर चयन करेंगे तो इससे आपको ज्यादा पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी जो आपके लागत मूल्य को बढ़ाएगी, जबकि सरकार की मंशा है कि लागत मूल्य को घटाना है और आपकी आय का संवर्धन करना है, आय को बढ़ाना है, आपकी जीविका का आधार ही कृषि है।
1: गोष्ठी एवं प्रदर्शनी में आए हुए किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं व्यक्त की।
4: देखिए, मेरा नाम विशंबर दयाल वर्मा है, ग्राम पोस्ट खैराकंकु विकास खंडगंज डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का मैं निवासी हूं।
1: कैसे आए हैं यहां पर और क्यों आए हैं?
4: यहां पर प्राकृतिक खेती का विषय है, खेत बचाओ अभियान चल रहा है जिसमें हम प्राकृतिक खेती के अच्छे कलाकार हैं, 125 किसानों को प्राकृतिक खेती

0: काम भी कराते हैं, तो उसी विषय में हम लोगों को बुलाया गया।
1: जो खेत बचाओ अभियान है, इससे क्या कुछ लाभ आप लोग मानते हैं कि सरकार के माध्यम से हो सकता है?
0: ये हमारे जो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होगा, इसलिए जो हमारे पहले बुजुर्ग थे और खूब लंबे दड़ंगे हट्टा कट्टा होते थे, और जो हमारी भैंसे थी उनका दूध भी सब महकता था, यहाँ तक कि मेरा धान का खेत भी महकता था। आज जब से डीएपी यूरिया का मार बढ़ा है, किसान मारामारी करने लगे डीएपी यूरिया में, तब से जो है सारी चीजों का आनंद खत्म हो गया और हम लोग काफी बीमार भी हो रहे हैं।
1: सरकार की मंशा के तहत आप सबकी आय को दोगुना करने के लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें से हमारा कृषि विभाग आज जो यहाँ पर खेत बचाओ अभियान के तहत एक प्रदर्शनी लगी है, मंत्री जी आए हैं, क्या कुछ आप लोगों को इसमें सीखने और जानने का मौका मिल रहा है?
0: सीखने जानने मिल रहा है और आमदनी तो दोगुना होने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। जो मोटे अनाज का कार्यक्रम चला रहे हैं, यदि कोई मोटे अनाज का सेवन करता है तो आधी बीमारियां यूं ही भाग जाएंगी। दूसरे नंबर पर अगर वो प्राकृतिक खेती का काम कोई कर रहा है, उसका अनाज लेकर कोई खा रहा है, तो उसकी भी बीमारियां चली जाएंगी। ये हमारे मनोज भाई हैं, प्रकृति के बहुत नंबर एक खिलाड़ी हैं।
1: मनोज जी, आप किस गांव से हैं?
2: हमारा गांव है बहादुरपुर, ब्लॉक त्रिवेदीगंज, और हम यहाँ खैरा कनकू में हम भी ट्रेनिंग देते हैं 125 किसानों को, और हम प्राकृतिक खेती 2019 से कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: हम किसानों को ये बताते हैं कि देसी गाय पालिए और उसी के गोबर गोमूत्र से हम खाद भी बनाते हैं, दवा भी बनाते हैं और वही इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, जैसा आपने कहा कि गाय पालने से इस समस्या का निदान हो सकता है, क्या कुछ जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों ने इसका अनुपालन किया?
2: जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग देसी गाय पाले हैं और जीवामृत बनाकर खेत में डाल रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। क्या मानते हैं कि आज के समय में प्राकृतिक खेती पुराने समय में जो चीजें हुई हैं उसको पुनः लाने में सफल है?
2: हाँ, उन्हीं का अनुकरण ही है और लोग अब बढ़ रहे हैं, रसायन से दूर हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं।
1: तो आप क्या मानते हैं कि जो हमारे किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं या जो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: प्राकृतिक खेती से जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम बताते हैं, लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं और इससे फायदा भी मिल रहा है प्राकृतिक खेती से। जिसका अनाज खाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं और इनसे और सारी फायदे हैं, जैसे आवाज कल का जो सिस्टम है, ये मौसम का अनुकूलन बिगड़ रहा है, ये सब अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो ये सब मौसम का अनुसरण फिर वही गति से आ सकता है और बीमारियां भी कम पड़ेंगी और आदमी का जनजीवन भी स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल, आपका क्या मानना है इस विषय में?
0: देखिए, प्राकृतिक खेती बहुत ही अच्छी चीज है, हमारे बुजुर्ग भी करते थे, हमारी भी संज्ञान में है कि जो सरकार ने चलाया है ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसमें एक बात है कि हमारी जो जिले की हर मंडियां हैं उसमें एक दुकान प्राकृतिक खेती की होनी चाहिए, इसलिए कि जो हम लोग पैदा करते हैं प्राकृतिक की सब्जी अनाज, उसको हम बेचने का,
1: यानी बाजार की मांग आपकी सरकार से आवश्यकता,
0: हमारी तरफ से आवश्यकता है।
1: एक और साथी से आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम जिया लाल यादव है, गाँव ग्राम चरकैला, पोस्ट डलमा है, कुदराहा ब्लॉक, जिला बस्ती।
1: बहुत अच्छी बात है। इस कार्यक्रम की जानकारी आपको कैसे हुई?
3: हमारे गांव के किसानों ब्लॉक से हमें जानकारी मिली, जिससे प्राकृतिक खेती खेत बचाओ अभियान तमाम प्रकार की प्रचार बताया गया, जिससे गांव में ये कार्यक्रम होना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे खेतों में सुधार आ रहा, प्राकृतिक खेती भी करते हैं हम लोग।
1: तो जैसा आज यहाँ खेत बचाओ अभियान के तहत ये गोष्ठी हो रही है यहाँ पर, क्या कुछ मानते हैं कि इसका लाभ आप तक पहुँचेगा?
3: हाँ, पहुँचेगा लाभ, हम लोग उससे जुड़े हैं, हरी खाद लगाए हैं और सब सुविधाएं जो है वो मिलती है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है हरी खाद लगाने से।
1: अच्छा, खेत की उर्वरा शक्ति के लिए क्या मिट्टी की जांच वगैरह कराते हैं?
3: हाँ,
1: कभी कभी
3: हाँ, मिट्टी की जांच भी कराते हैं और जांच आती है उसी तरह से खेत की जो हरी खाद बोई जाती है उससे खेत में पैदावार भी बढ़ती है।
1: कार्यक्रम में वाचन एवं संकलन आलोक कुमार गुप्ता का एवं प्रस्तुति जयंत पटेल की।
4: पंचो देखो, अब एक आप सुनिए रेडियो रिपोर्ट। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत विषय पर आयोजित कृषक गोष्ठी और कृषक चौपाल पर आधारित रेडियो रिपोर्ट रही है के वाचन और संकलन के रे आलोक कुमार गुप्ता भैया। तो भाई देखो, ये तो रही रेडियो रिपोर्ट, लेकिन चल चलावत पंचन का मौसम की जानकारी दे चलिए। आज का अधिकतम तापमान 37.0 जून की सामान्य से 1.0 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम 28.0 जून की सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा रहा। आर्द्रता की अधिकतम रही 79%, न्यूनतम 63%। हवा की गति 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही। एक दिशा रही दक्षिण पूर्वा पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का से मध्यम बादल छाए रहे के साथ ही साथ कुछ स्थान पर बूंदाबांदी हल्की वर्षा होने की संभावना बटे। औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहे की संभावना है। लू जैसी स्थिति आगे भी बनी

के सम्मान भाई तो रही मौसम की जानकारी, लेकिन पंचो समय पे समय के बाद अभी ज्यादा ना देता है समय, फिर बात बताए कीजिए कहियो फिर मिला जाए, तब तक विमला का दी अनुमति। पंचो जय हिंद।

आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब कार्यक्रम रूपरेखा में पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए। विविध भारती के राष्ट्रीय कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से और रात 10:30 से। और हमारे स्टूडियो से गीत गुंजन कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:15 से। 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम में चंद गजलें सुनिएगा। और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनेंगे रात 10:30 तक। और अब कल शनिवार 27 जून के कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए। कल प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिनभर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। 7:30 से अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से सुर संगम कार्यक्रम सुनिएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। आज की बात का टॉपिक रहेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। इसके बाद प्रकाश शुक्ला की लिखी झलकी सुनिएगा यस सर निर्देशक जयदेव शर्मा कमल का। समाचार पत्रों से सेगमेंट अयोध्या मंडल की लोकल खबरें इसमें दी जाएंगी आपको और फिल्मी गाना सुनवाया जाएगा। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:00 से 9:30 से। बातें आसपास की फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में कल का टॉपिक रहेगा अम्मा जी मंदिर अयोध्या के बारे में आपको बताया जाएगा। सुबह 10:00 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। आकाशवाणी अयोध्या एफएम से दिन 12:30 से लोकगीतों का लोक रंग कार्यक्रम सुनिएगा। 1:00 फरमाइशी प्रोग्राम फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या आपको सुनवाया जाएगा। 1:30 से कुछ तुमने कहा प्रोग्राम फेसबुक श्रोताओं के कमेंट्स पर आधारित ये फरमाइशी फिल्म संगीत प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कल दिन में 2:00 गीतांजलि प्रोग्राम, 2:15 से समाचार दिल्ली से होंगे। 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम में हेलो सहेली। इस फोन इन प्रोग्राम का टॉपिक रहेगा क्या आप कर रही हैं स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग। 3:00 से NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनवाया जाएगा। 3:30 से शाम 5:00 तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। युवावाणी में कल शाम 5:00 चर्चा का टॉपिक रहेगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। हमारी धरोहर सेगमेंट में हुमायूं मकबरा दिल्ली के बारे में बताया जाएगा। आर्थिक जगत सेगमेंट में कोल लैंडिंग की जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी गाना सुनवाया जाएगा। लोक संगीत कार्यक्रम 5:30 से 6:10 से शाम सुहानी प्रोग्राम और 6:30 से गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम में लोकगीत सुनिएगा। किसानवाणी कार्यक्रम में कल 6:45 पर चर्चा का टॉपिक मृदा परीक्षण से लाभ। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद चौधरी से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। मृदा और बीज जनित रोग कारण लक्षण और बचाव। एक और भेंटवार्ता डॉक्टर अरविंद सिंह से आप सुनेंगे सिंचाई और डिजिटल खेती के बारे में। अलावा इसके बाजार भाव मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत सुनवाया जाएगा। कल शाम 7:30 से हम आपको सुनवाएंगे पॉडकास्ट सीरीज का 7वां एपिसोड प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके बाद 7:50 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। आकाशवाणी अयोध्या एफएम स्टूडियो से रात 8:15 से एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा। 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या आप सुनेंगे। इसके अलावा समय समय पर आपको विविध भारती के राष्ट्रीय और केंद्रीकृत कार्यक्रम मुंबई से सुनवाए जाएंगे। अभी आप कार्यक्रम रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। थोड़ी देर के बाद ठीक 7:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आपको प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कर लीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
1: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा फानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ के तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में

0: रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी दो दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले चार दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आप हैं आकाशवाणी अयोध्या एफएम के साथ 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर देश और दुनिया के श्रोता इंटरनेट के जरिए ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। 7:31 और 20 सेकंड हुए हैं। अब से लेकर 8:15 तक आपको हम सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।
1: अखियों के झरोखों से इस फिल्म का गीत सुनिए हेमलता की आवाज में। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर

0: गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जय माला कार्यक्रम में अब सुनिए अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है बाबू।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत गुलदस्ता में आज पेश खिदमत है कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गजलें। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सामईन कराम, लीजिए समाद फरमाइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल। शायर हैं निदा फाजली, मौसिकार जगजीत सिंह।

कब अहले शहर रखते हैं दिन रात का हिसाब, सबके नसीब में है कहां चौधरी की रात। शायर सईद राही का कलाम लीजिए समाध फरमाएं गुलुकार घनश्याम वासवानी की आवाज में।

वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे। रहेगा साथ तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात मेरी जिंदगी वफा ना करे। गुलदस्ता नशरिया की आखिरी गजल समाप्त कीजिए गुलुकारा इंद्रानी रिजवी की आवाज में। कलाम है कतील शिफाई का, मौसिकी है बेनी साटमकर की।

0: मुअज्जज सामईन, इंद्रधनुष के तहत गुलदस्ता नशरिया में आज आपने सुनी कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गजलें। अब रुखसत होने की दीजिए इजाजत, शुक्रिया।
1: ये था विविध भारती का नजराना गुलदस्ता।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: वाले को आवाज दूं क्या?
1: लत्ती वाले को क्या घर के भांडे बर्तन देने हैं? आ गए आप दोस्तों के साथ मच्छरबाजी, मेरी जल खत्म हो गई।
0: ओ अल्लाह खैर करे, मैंने कहा सुबह सुबह शहनाई की जगह ये तुनक।
1: तुमको क्यों नहीं, कौन टैक्स लगा है इस पर? तुम मरद सुबह सवेरे मुंह में बीड़ी का टुर्रा लगाकर घर से निकल जाने कोई मर्दानगी समझते हो? तो हम औरतें।
0: हाँ सही है श्रीमती जी, सही है कि आप औरतें तुनकने को अपनी जनानगी क्यों नहीं समझती? भाई क्या बात कही है सुबह सुबह,
1: न घर की फिक्र न गृहस्थी की।
0: मैडम गृहस्थी है कहाँ, ले देकर तुम और मैं, उसमें भी तुम अपनी फिक्र जरूरत से ज्यादा रखती ही हो, और मैं तुम्हारे रहते अपनी फिक्र करूं तो ये तुम पर अविश्वास होकर डालेंगे। तुम्हारा कमा कर लाना और मेरा बैठे बैठे खाना, वक्त पर सिप करने को गर्मा गर्म चाय, हाय और ये कुरमुरे बिस्कुट, वाहरे वाह मैं धन्य हो गया।
1: मैं फिर कुछ कहूंगी तो कहोगे तुनक रही है।
0: डार्लिंग तुम तुनको, खूब तुनको, तुनकना तुम्हारी सेहत का राज है। ये जेल की दीवार से मजबूत तुम्हारा गुलबदन चलते फिरती मिसाल है।
1: बस बस तारीफ की हंडिया बहुत पक गई, आज पहली तारीख है।
0: और भी चकाचक।
1: श्रीमान जी कोई तरकीब सोचो, वरना इस बार फाके करने पड़ेंगे। फाके?
0: फाके? और तुम्हारे रहते असंभव।
1: संभव है, बिल्कुल संभव। पूरे 40 रुपए के घाटे का बजट है। अब जरा अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलने के लिए बीड़ी का एक तुर्रा सुलगाओ, और लो ये है महीने का अनुमानित खर्च।
0: और ये दूसरा कागज क्या है?
1: ये पीछे बताऊंगी, पहले कोई 40 रुपए के घाटे की पूर्ति का तरीका सोचो।
0: मैं सोचूं डार्लिंग?
1: क्यों, सोचने से कोई पीड़ा होती है या आपका वजन घट जाता है?
0: डार्लिंग ऐसा करो, तुम ही कुछ निर्णय ले लो ना। बात ऐसी है कि ये होम डिपार्टमेंट की बात है और इस मामले में अपना दिमाग
1: काम कर जाता है। क्यों, और उन सिर फिरे दोस्तों के बीच राजनीति से लेकर नायिका भेद तक की बातों में तुम्हारा दिमाग जैसे रिश्वत के पैसों की तरह खर्च होता रहता है।
0: बात ये है श्रीमती जी के
1: दो दो अंडे रोज खाकर आपकी अकल मुट्ठी आ गई है।
0: ओहो, कुछ हमें भी तो कहने दीजिए।
1: ये
0: आप जो भी प्रपोजल रखेंगे मुझे स्वीकार होंगे?
1: पक्की बात?
0: बिल्कुल, मेरी कलाई पर तुम्हारी हथेली।

0: गोलियों के पकड़ की तरह पक्के।
1: सच? अच्छा दो वचन
0: दिया।
1: तो सुनिए, मेरे पास जो कागज है उसमें आइटम वाइज कुछ कटौतियाँ हैं।
0: अच्छा।
1: ये कटौतियाँ हमारी गृहस्थी पर आए हुए आर्थिक संकट को देखते हुए आवश्यक हैं। आप अनिवार्य रूप से इनका पालन करेंगे?
0: अवश्य मेव।
1: खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं।
0: मैं खुदा के साथ साथ अपनी अन्नदात्री पालनहारा पत्नी श्रीमती।
1: बस बस बस श्रीमान। तो आइटम नंबर एक, मकान किराया कोई कटौती नहीं,
0: ताजिंदगी कोई गुंजाइश भी नहीं।
1: और आइटम नंबर दो, प्रोविजन केवल एक कटौती, उर्द की दाल। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं खाता है ना?
0: कहाँ, बस एक तुम ही तो नहीं खाती हो।
1: ओहो, पिछले मैंने आपके ताऊ जी, मौसी जी, चाची जी, बहन जी और छोटे मोटे भाई भतीजे आए थे। उर्द की दाल खाने वाले लोग अल्प संख्या में थे, आता है।
0: ओहो डार्लिंग, ये सब के सब सेहत के दुश्मन है। तुम तो मेरी सेहत का ख्याल करो।
1: मैं अपने किचन का ख्याल रखूंगी और अपनी बचत का, समझे श्रीमान?
0: देखो वो चने की दाल में।
1: कोई भी समझदार औरत चने की दाल में कटौती पसंद नहीं करती, ये बात आपके सूचनार्थ निवेदन है।
0: मगर क्यों भला?
1: क्योंकि चने की दाल जल्दी बनती है और उसमें कई वैरायटीज बन सकती हैं। अतः 4 किलो उर्द की दाल की जगह केवल 1/2 किलो दाल देने का निर्णय लिया जाता है। और आइटम नंबर 3 में कोई कटौती नहीं।
0: बाय द वे, आइटम नंबर 3 है क्या?
1: तुम आइटम नंबर 4 देखो, अंडे, डबल रोटी और मक्खन।
0: इसमें तो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए डार्लिंग।
1: बस इतनी सी कटौती होगी कि आज तक आपके लिए 2 अंडे प्रतिदिन आते रहे हैं और आज से 1 दिन छोड़कर 1 दिन केवल 1 ही अंडा आया
0: करेगा। मगर ओहो, मैं आपत्ति करता हूँ, कटौती एकांगी है।
1: तो आप सुझाव दें श्रीमान कि क्या डबल रोटी आधी लेने लगूं या मक्खन की टिक्की आधी कर दूं?
0: डार्लिंग मेरा मतलब ये था कि
1: मैं जो 2-4 टोस्ट खाती हूँ वो भी बंद कर दूं।
0: ओहो नहीं नहीं डार्लिंग, ये बात नहीं, समझा करो बात को।
1: क्या पता है आपको, मैं दिन भर दफ्तर में सिर खपाती हूँ, आपकी तरह साहित्य वाहित रचने का निकला काम नहीं करती।
0: ओफो, इजाजत है तो मैं भी कुछ कहूँ।
1: आपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुछ कहा था। अच्छा, मैं आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए आइटम नंबर 5 में कोई कटौती नहीं कर रही, जबकि दूध वाला हर महीने दूध में पानी की मात्रा के साथ साथ दूध का भाव भी बढ़ाता जा रहा है।
0: धन्यवाद, आपके सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार।
1: आप कई कई बार शुक्रगुजार होंगे श्रीमान। हाँ, और मैं आपकी आभारी होंगी यदि आप ये बताने की कृपा करें कि आप एक ड्रेस कितने दिन में बदलते हैं?
0: 2 दिन में।
1: तो निर्णय लिया जाता है कि आप कल से एक ड्रेस 3 दिन चलाएंगे।
0: क्या?
1: और चादर, तकिया, गिलाफ वगैरह प्रति सप्ताह के बजाय 15 दिन में बदले जाएंगे।
0: ओह नो।
1: इस तरह आइटम नंबर 6 में धोबी के खर्च में कटौती की जाएगी और आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं।
0: आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं, क्यों डार्लिंग?
1: फिर वही डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तंग आ गई तुम्हारी संग्रेजी डार्लिंग से।
0: अच्छा बाबा, श्रीमती जी, देवी जी, बस। अच्छा देवी जी, क्या मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग के 15 रुपए महीने में कोई कटौती क्यों?
1: देखिए श्रीमान, मैं मानती हूँ ये खर्च कुछ अधिक है, पर आपको इस आइटम नंबर 7 व 14 के बारे में बाद में बताऊँ।
0: अच्छी बात है। नाउ आइटम 8,
1: बिजली का बिल, और आइटम नंबर 9 तेल, साबुन और टूथपेस्ट, और आइटम नंबर 10 है हरी सब्जी, कोई कटौती
0: है? आई ऑब्जेक्ट, मेरा मतलब है कि
1: मैं समझ गई आपका मतलब, कहिए किस बात का गम है आपको?
0: श्रीमती जी, आप अपने लिए 2 टिकिया जो महंगा वाला साबुन त्वचा की रक्षा और सौंदर्य वृद्धि के लिए लेती हैं, वो कट।
1: क्यों?
0: सुबह की चाय और रात की कॉफी जो बिजली से बनती है वो बंद।
1: शेम शेम शेम श्रीमान, आपको शर्म आनी चाहिए, नारी के सौंदर्य को नष्ट करने वाले आपके प्रस्ताव की मैं निंदा करती हूँ। क्यों? हा? और आपके इस प्रस्ताव पर आपके दिमाग की इस उपज की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव को ठुकराती हूँ। सुनिए, ये मैं क्यों करती हूँ, आपके बीड़ी के टुर्रों की बदबू से बचने के लिए खुशबू वाले प्रसाधन जरूरी हैं और समय के सदुपयोग के लिए बिजली का उपयोग। आया आपके मिजाजे शरीफ में?
0: नहीं आया देवी जी, तो आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ
1: और मैं अपनी निंदा और भर्त्सना।
0: धन्यवाद।
1: अच्छा तो अब आप एक दैनिक, एक फिल्मी पाक्षिक और एक मासिक पत्र लेते हैं।
0: जी हाँ।
1: और मेरे लिए सिर्फ एक मासिक।
0: हाँ।
1: तो प्रस्ताव है कि आपका मासिक पत्र जो काफी महंगा है बंद कर दिया जाए।
0: और आप दैनिक क्यों बंद नहीं कर देती?
1: जी, दैनिक की तो रद्दी हो जाती है और आप मासिक की फाइल बना रहे हैं, अतः वो रद्दी में नहीं बेचा जा सकता, पैसा ब्लॉक होता है।

0: फाइल का क्या होगा?
1: कुछ नहीं, जब हम काफी बचत कर लेंगे तब इकट्ठी फाइल मंगवा लेंगे, क्यों ठीक है ना?
0: जी नहीं।
1: न सही, आइटम 12 और 13 इसमें कोई कटौती नहीं।
0: भाई वाह, क्यों नहीं कटौती?
1: क्यों?
0: अरे पार्टियां लग्जरी हैं, ये बंद होनी चाहिए।
1: आप चाहते हैं मैं ऑफिस की पार्टियों में शरीक ना हूँ, सबसे संबंध तोड़ लूँ, समुद्र में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता। रही कैंटीन के बिल की बात, चाय तो छूटेगी नहीं। हाँ, अल्पाहार अलबत्ता बंद कर सकती हूँ।
0: ओ मगर बंद करने की कौन कहता है डार्लिंग, मेरा मतलब है कम करने का प्रस्ताव विचारणीय हो सकता है।
1: खैर कोशिश करूंगी। अच्छा, आइटम नंबर 14 व 15 में कोई कटौती नहीं, पाउडर क्रीम सेंट आदि सौंदर्य प्रसाधन स्त्री के लिए अनिवार्य हैं। और आइटम 15 के अंतर्गत आकस्मिक आवश्यकता के लिए रुपए बचाना भी, कोई आपत्ति?
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा आप ये बताइए, आपको जो 10-15 रुपए हाथ खर्च दिया जाता है, क्या उसके खर्च का मैं ब्यौरा पूछ सकती हूँ?
0: यही बस कुछ किताबें, सिनेमा,
1: बीड़ी के तुर्रे, यार बाजी, यूँ कहिए ना, फिजूल खर्ची की भी हद होती है श्रीमान। देखिए, इस प्रस्ताव का धरता से पालन होना चाहिए कि एक फिल्म जो हम दोनों देखते हैं, उसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक 2 फिल्में देखेंगे, बस।
0: सिर्फ 2?
1: हाँ, यहाँ भी आपके साथ उदारता बढ़ती जा रही है।
0: और देवी जी, ये हर इतवार को आप जो अंग्रेजी फिल्म देखती हैं?
1: मैंने कहा था ना, भी दफ्तर के साथियों का साथ देना एक मजबूरी है। जब वे पांचों देवियां यहाँ आ धमकती है, तब बताइए मैं क्या कहूँ। और तब आपसे भी तो इनकार करते नहीं बनता, क्योंकि हमारे साथ चलने के लिए तब आपके खुद के मुँह में पानी भर आता है।
0: लेकिन फिर भी आपने कभी हमारी इस दयनीय स्थिति पर रहम नहीं किया।
1: खैर, तो स्थिति इस प्रकार रही कि आइटम नंबर 2, 4, 6, 11, 12, 13 व 16 की कुछ मामूली कटौतियों से इस माह का घाटा पूरा हो जाता है।
0: इस स्वीकृति के साथ कि ये कटौतियाँ एकांगी हैं, फिर भी मान्य हैं।
1: जो भी है, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपको इनका पालन करते हुए गृहस्थी के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट करनी ही होगी।
0: अच्छा, आप भाई दीपे आइटम 7 और 14 पर क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते
1: हैं? हाँ, अच्छा पहले ये बताइए कि आपकी मित्र मंडली की मेरे प्रति क्या राय है?
0: अजी लोग सिर धुनते हैं।
1: मैंने राय पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि सिर धुनते हैं या रुई।
0: वही तो मैं बता रहा हूँ श्रीमती जी, कि लोग ये कहते हैं कि भगवान यदि अगला जन्म होता तो हमें चाहे कानी लूली लंगड़ी कैसी भी बीवी मिले, मगर मिले कमाऊ।
1: आज जब मैं सर समझ कर आपके साथ निकलती हूँ तब
0: सब लोगों की नजर मेरे बजाय तुम पर टिकी रहती
1: है। ये सच है ना?
0: जी हाँ, बिल्कुल सच।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कारण तुम्हें मान मिलता है ना?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो फिर आइटम 7 में कटौती का अर्थ होगा कि मैं गंदी।
2: नमस्ते जीजा जी।
0: जी नमस्ते। नमस्ते मधु, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक?
2: ठीक हूँ जीजा जी।
1: अरे मधु, यहाँ एक फ्राई किया हुआ अंडा पड़ा था, मेरे चूहे ले गए क्या? तेरे जीजा जी के लिए रखा था।
2: दीदी वो तो मैं खा गई, जीजा जी के लिए और बना दो, मैं भी एक और लूंगी।
0: बात ये मधु, अंडा एक ही आता है, वैसे मैं भी 2 ही खाता था, पर वो तुम्हारी दीदी ने आज ही से।
2: अरे वाह दीदी, जीजा जी कमाते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने खाना भी नपा तुला था।
1: तू सोचती है, वो बात नहीं है मधु।
2: बात कुछ भी होती थी, खाने पीने में कटौती।
0: यही तो मैं कहता हूँ मधु, पर
2: देखो दीदी, कल मैं खुद जाकर 4 अंडे, 2 डबल रोटी और 2 टिक्किया मक्खन लाऊंगी, समझी?
3: जीजा
2: जी, यहाँ पिक्चर कौन कौन सी चल रही
1: है? अरे सब ऐसी है, तेरे देखने लायक नहीं है।
2: ठीक है, जैसे भी है दीदी, अभी जब अपन ड्राई क्लीनर्स के कपड़े देने चलेंगे तो लौटते समय एडवांस टिकट ले आएंगे, क्यों जीजा जी?
0: बिल्कुल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मधु, सब ठीक हो जाएगा।
2: अच्छा दीदी, आप दोनों तय करो कि कौन सी पिक्चर चल रही है, मैं भी नहा के आई।
1: हो गई अपनी बचत योजना चौपट।
0: मधु कोई 10-20 कपड़े तो रोज धुलवाएगी,
1: और 10 दिन तक दुगने अंडे, डबल रोटी और सब्जी आएगी।
0: और ये जब जाएगी ना, तभी से सलवार कुर्ता भी भेंट करना।
1: हाय, 40 का घाटा था ही, 100 हो जाएगा।
4: आज हवा महल में आप सुन रहे थे मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हो

0: विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे 10:30 से समय मिलाइए रात के ठीक 8:15 हुए हैं और यहां से यानी कि आकाशवाणी अयोध्या एफएम से अब शुरू होने जा रहा है बॉलीवुड फिल्मी गानों का प्रोग्राम गीत गुंजन।
1: समय पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, बढ़िया है, मजे में है ना। हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में जब आपने मुझे याद कर लिया तो मैं पहुंच गया आपके पास। जी हाँ, 101.9 मेगाहर्ट्ज से ट्यून करके आप ये आवाज सुन रहे हैं हवाओं की तरंगों पर जो पहुंच रही है, और इंटरनेट के जरिए जो प्रोग्राम ये सुन रहे हैं देश और दुनिया में, प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर, वहां पर भी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो आपका रेडियो मीत अमरजीत लेकर हाजिर है प्रोग्राम गीत गुंजन। आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए पहले आज बात करें 26 जून की। आज क्या कुछ घटित हुआ इतिहास में। 26 जून 1948 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश ने पहले मॉडल को आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने ही पेटेंट कराया था। आज ही के दिन साथियों 1539 में बंगाल के गौड़ क्षेत्र में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच चौसा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 26 जून 1949 को बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। आज ही के दिन 1976 में कनाडा के टोरंटो में स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया। 1815 फुट की ये इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत ने इसे दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। 2000 में आज ही के दिन बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में 26 जून के दिन एक खास महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक महत्व युद्ध को टालने में उसकी भूमिका, कमजोर देशों को दी जाने वाली सहायता और शांति स्थापना में उसके योगदान से सभी वाकिफ हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया, लेकिन इसके घोषणा पत्र को उसी वर्ष 26 जून को स्वीकार कर लिया गया था और इस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो चलिए गाना भी चलाने का वक्त आ गया मेरे पास, उसके पहले जी हाँ ये सुनिए। आ गया हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आ गया हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी आपकी ही इनायत है।

भाई आज बॉलीवुड फिल्मी फ्राइडे भी है, तो फिल्मी फ्राइडे में रिलीज फिल्मों की बात हम करेंगे और कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई। लेकिन उससे पहले ओपनिंग म्यूजिक तो चल जाए। जी हाँ,

और अब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। जी हाँ, आज की तो फिल्मी फ्राइडे में आज कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं? देखते देखते जून 2026 का महीना भी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन की दुनिया में सुस्ती छा जाएगी। आज सिनेमाघरों में 5 नई फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल है। इसमें अक्षय कुमार के साथ 30 से ज्यादा जी हाँ सितारों की फौज है पूरी बॉलीवुड की, आप देख सकते हैं। जाहिर है ऐसे में हंसी का ओवरडोज देने की पूरी तैयारी की है बॉलीवुड ने। इसके अलावा रामायण की सीता दीपिका चिखलिया भी एक फैमिली ड्रामा तेरा मेरा नाता लेकर आ रही हैं आज ही के दिन। बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है ये। 2015 में आई वेलकम बैक के लगभग 10 साल के बाद ये फिल्म आ रही है। इस बार फिल्म में नाना पाटेकर और अनिल कपूर तो नहीं है, लेकिन फिल्म की कास्ट में दिशा पाटानी, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, लारा दत्ता, राजपाल यादव, उर्वशी रोतेला, जाकिर हुसैन, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, यशपाल शर्मा, जॉनी लीवर, पंकज धीर, श्रेयस तलपड़े, मुकेश तिवारी, आफताब शिवदासानी, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर, कृष्ण अभिषेक, कीकू शारदा, बिंदु दारा सिंह, फिरोज खान, पुनीत इस्सर, सायजी शिंदे, सुदेश बैरी, किरण कुमार, हेमंत पांडे, नवाब शाह और मीका सिंह भी नजर आएंगे। पढ़ते पढ़ते मैं तो थक गया, इतने नाम थे। 30 कलाकारों को आप एक साथ फिल्मी पर्दे पर देख सकेंगे, लेकिन अभी तो सुन सकेंगे ना, गाना मीका सिंह की आवाज में आ गया।

0: तो 10 साल बाद वेलकम के ये फिल्म आ रही है, तो 10 साल के बाद वेलकम का ये गाना बजाना तो बनता ही था, बनता था कि नहीं बनता था? तो मैं कहाँ चूकने वाला था, गाना सुनवा दिया आपको।
1: हेलो
2: सुनो, टेलीफोन नंबर,
3: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। यह है अयोध्या 101.9।
4: रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा।
0: आपकी चॉइस एजे अमरजीत, आपके पास।

0: अक्टूबर से इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को।
1: और अब गीत गुंजन प्रोग्राम में स्टार ऑफ द वीक, कौन है हमारे आज के स्टार, बस उसके लिए भी ओपनिंग म्यूजिक।

और आज के स्टार हैं अर्जुन कपूर, जो आज अपना 36वां बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सबके साथ। अगर आपका भी जन्मदिन आज है तो आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्जुन कपूर के साथ अपना बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यू टू ऑल फ्रेंड्स। 26 जून सन 1985 में जन्मे अर्जुन की उम्र तब केवल 11 साल की थी जब श्रीदेवी के आने से पेरेंट्स का तलाक हो गया। बुरी तरह से टूट चुके थे अर्जुन कपूर को। सलमान खान से उन्हें इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने अपना वजन कम करने की प्लानिंग की। सलमान ने उनसे कहा था कि यदि वे अपना वजन कम कर लें तो हीरो बन सकते हैं। यही वो पल था जब अर्जुन कपूर ने एक्टर बनने के लिए अपना वजन कम करने की सोच ली। सलमान खान की इंस्पिरेशन से अर्जुन ने अपनी फिजिक पर काम किया और 50 किलो वजन घटा लिया। जब अर्जुन 16 साल के थे तो इनका वजन उस वक्त 140 किलो तक पहुंच गया था। 2012 में फिल्म इश्क ज़ादे से अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि एक्टिंग में किस्मत आजमाने से पहले अर्जुन ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी काम किया। अर्जुन कपूर ने फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की। उन्होंने 2003 में कल हो न हो में निखिल आडवाणी के साथ और इसके बाद उन्होंने सलामे इश्क में भी सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया। अर्जुन कपूर ने नो एंट्री 2005 में जो आई और वांटेड 2009 में जो आई उसमें भी सह निर्माता के रूप में काम किया था। 2014 में उनके करियर का सबसे सफल वर्ष माना गया। इस साल अर्जुन की 3 फिल्में रिलीज हुई, गुंडे, उसके बाद 2 स्टेट्स और तीसरी फिल्म थी फाइंडिंग फैनी। 2 स्टेट्स इनकी सबसे बड़ी कमर्शियल कामयाबियों में से एक अलग ही फिल्म साबित हुई और इसके लिए इनकी एक्टिंग की भी तारीफ की गई। 2015 में फिल्म तेवर रिलीज हुई। 2016 में इन्होंने की एंड का में करीना कपूर के साथ अभिनय किया। 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड और मुबारका। 2018 में नमस्ते।

से इंग्लैंड में इनका करियर थोड़ा डाउन चलने लगा इस फिल्म के बाद। फिल्मों में तो ये आते ही रहे, लेकिन इनकी कोई बड़ी कामयाबी इनको किसी फिल्म में नहीं मिल सकी। इंडियाज मोस्ट वांटेड, फिर पानीपत, संदीप और पिंकी फरार, सरदार द ग्रैंडसन, भूत पुलिस, एक विलन रिटर्न्स, कुत्ते, द लेडी किलर। लेकिन 2024 में इन्होंने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में खलनायक की भूमिका निभाई, जिसे उनके करियर का शानदार कमबैक हो गया। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां आ गया ये गाना आपके पास। अरिजीत सिंह और चिन्मय शिद्दा की आवाज में टू स्टेट्स फिल्म से, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे।

तरफ जी हाँ बारी आ गई स्पोर्ट्स की। खेलों में क्या कुछ हो रहा है। महिला T20 वर्ल्ड कप के 23वें मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीती रात बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंडियन टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखा है। भारतीय टीम अब 4 मैचों में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 2 नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय टीम का अगला असली मुकाबला 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अगर इस मैच में जीत मिलती है तो इंडियन टीम का सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा, और अगर हार गई तो फिर दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा।

बीती रात 137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। स्टार ओपनर स्मृति मंधाना केवल 8 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला और 34 गेंदों पर 53 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। उधर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज से अपने नए अभियान की शुरुआत कर दी है। टीम कप्तान शेष अय्यर जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान है, लेकिन अभी भी सबकी नजरें 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं, जो आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकते लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अगर कर लेते तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को वो तोड़ सकते थे। सूर्यवंशी 15 साल 91 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाते। ऐसा हुआ नहीं। आज 1989 में 1989 में 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, 37 साल पुराना, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल की। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार को गोलों का एक नया रिकॉर्ड बन गया। जी हां, टूर्नामेंट में अब तक कुल 177 गोल हो चुके हैं, जो किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक है। इसके पहले सबसे ज्यादा 172 गोल का रिकॉर्ड कतर में खेले गए 2022 वर्ल्ड कप में बना था। मौजूदा संस्करण में यह रिकॉर्ड ग्रुप चरण के दौरान ही टूट गया। इस बार पहली बार 48 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं। फुटबॉल का 24वीं रैंक की टीम इक्वाडोर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में शुक्रवार को 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। ये भी हो गया। जी हाँ, इस जीत से टीम ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। इक्वाडोर 2006 के बाद पहली बार नॉकआउट में पहुंच गई है। और गाना प्ले करने से पहले प्रोग्राम का आखिरी आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें, जो आयरलैंड के साथ T20 मैच खेला जा रहा है उसमें आयरलैंड ने 9 विकेट खोकर पहले 20 ओवर में 182 शानदार रन बनाए हैं। और पहला जो स्कोर मेरे पास आया वहां पर 51 रन बने थे, 2 खिलाड़ी आउट थे टीम इंडिया के 3.5 ओवर में। लेकिन अब से कुछ देर पहले 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं टीम इंडिया के 8 ओवर की बॉलिंग के बाद। अभिषेक शर्मा ने शानदार 20 गेंदों में 50 रन बनाए लेकिन वो आउट हो चुके हैं। तिलक राम वर्मा 16 पे खेल रहे हैं, उनका साथ दे रहे थे वाशिंगटन सुंदर। अभी उस वक्त 70 गेंदों में 102 रन बनाने थे। फिलहाल हमको यहाँ पे गाना चलाना है आपके लिए। मैच तो आप घर पर देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर।

तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। बेखबर वाले साहिल पे आके फिसल गए।

0: बेखबर वाले साहिल पे आके फिसल गए, हौसले वाले जो थे वो पार तूफान कर गए। बस इसी के साथ आज का गीत गुंजन प्रोग्राम समाप्त करने की अपने रेडियो मित्र अमरजीत को दीजिए इजाजत। आप सब अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बॉलीवुड फिल्मी गानों का यह था गीत गुंजन प्रोग्राम जो आपने आकाशवाणी अयोध्या से सुना। बस कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए

0: जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों

0: में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य

0: सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics.

0: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
4: महफिल गजल प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। पहली गजल समाप्त कीजिए सोनाली और रूप कुमार राठौर की आवाज में, कलाम परवीन।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
0: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
0: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
4: और भाई, ये प्रोग्राम के आखिर में सुने गुलाम अली की आवाज को इस गजल में।

0: इस गजल के साथ ही आज का महफिल गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह है आकाशवाणी का अयोध्या एफएम 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हेलो अयोध्या प्रोग्राम बस कुछ ही पलों में आपके पास आने वाला है। कंट्रोल रूम से आज इंजीनियर रहेंगे मेरे साथ अश्विनी शुक्ला और राजकुमार मौर्य। आपका रेडियो मित्र अमरजीत बस ये प्रोग्राम लेकर कुछ ही पलों में आपके पास।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, V-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।

7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपकी अपने FM

0: 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है।
1: अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या।
0: आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर।
2: तो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर तो आपको इस प्रोमो से पता लग ही गया, फिर भी हम सबको बताते हैं 7376804090 7376804090। और आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम करते हैं और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और नंबर किसका लग गया इस प्रोग्राम में, आइए देखें उनसे बात करें। जी हेलो, आपका क्या नाम है?
3: नाम काजल कुमारी है, मैं फैजाबाद अयोध्या से बोल रही हूँ।
2: हाँ, अयोध्या बहुत बड़ा है, किस एरिया से आप बोल रही हैं?
3: जी सर, शहनो चौराहे।
2: शहनो, अच्छा, देवकाली बाईपास जो वहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो काजल क्या करती?
3: आपको कुछ कहना चाहती सर।
2: जी बोलिए बोलिए, आप ही का प्रोग्राम है।
3: आप दूर हुए तो क्या हुआ, आपको भुला दे वैसे हम नहीं, मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ, आपकी यादें मुलाकात से कम नहीं।
2: तो देखिए मुलाकात तो हो रही है ना ऑनियर।
3: Yes,
2: बहुत बढ़िया शायरी आपने पेश किया। और क्या करती है वैसे आप?
3: सर मैं पढ़ाई करती हूँ।
2: किस क्लास की पढ़ाई चल रही है अभी?
3: सर सेवेंथ क्लास की।
2: सेवेंथ की, तो ये बताइए आपकी मुझसे पहली बार ऑन ईयर बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि एक बार आपकी मेरे प्रोग्राम में बात हुई है शायद।
3: Yes, sir, हो गई है।
2: हो गई है ना? तो वैसे बहुत दिन के बाद आज की कॉल लगी आज आप इस प्रोग्राम में। Yes, और गाना कौन सा?
3: लगता नहीं था।
2: हाँ हाँ हाँ, अच्छा।
3: सर एक शायरी और सुनाओ।
2: अब इतनी शायरी सुनाएंगी तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, कुछ उनके लिए छोड़ दीजिए।
3: ठीक है सर,
2: चलिए सुना दीजिएगा। पहले गाना बता दीजिए किस फिल्म का सुनवाएं आपको।
3: सर अंधा कानून।
2: इसमें कौन सा गाना है, मौसम का तकाजा?
3: नहीं सर, जितनी चाबी भरी राम ने।
2: हाँ, चाबी लिख के तो इसमें नहीं आ रहा, रोते रोते हंसना सीखो, ये गाना है आपका।
3: यस सर, वही वही सर।
2: अब चलिए, जो आप हसरत आपकी थी ना, एक शायरी आप और सुनाना चाह रही थी, सुना दीजिए आप, बोलिए।
3: बस छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी बना देंगे, अजी छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी बना देंगे, मेहनत ना करेंगे मेरी जान की, बाप को राजा और माँ को रानी बना देंगे।
2: तो अगली बार जब शायरी सुनाइएगा ना, थोड़ा इत्मीनान से सुनाइएगा, क्योंकि स्पीड में आप रहेंगी तो किसी को समझ में नहीं आएगी शायरी।
3: जी सर।
2: चलिए गाना आपका चल गया, काजल पहुंच रहा है आपके पास, सुनिए।
3: थैंक यू सर।

0: लाइनों का इतना जबरदस्त खेल चलता है ना यहाँ पर, टेलीफोन लाइनों से कोई जीत नहीं सकता। यहाँ पर दो दो कॉल ड्रॉप हो गई और एक कॉल तो दशरथ पांडे जी की थी, पता नहीं कितने दिन के बाद उनकी कॉल लगी। यहाँ पर निर्दया के गाने की फरमाइश भी कर रहे थे अयोध्या से, और उन्हीं की जगह पे कोई दूसरा आ गया। देखिए वो भी टेलीफोन लाइन पर हैं कि कहीं चले गए हैं। भरत लाल जी हैं अयोध्या से। जी आपका स्वागत है, क्या करते हैं वहाँ पर?
1: बस कुछ नहीं सर, मैं दोनों आँखों से दिव्यांग हूँ, दृष्टिहीन, मैं पढ़ाई करता हूँ।
0: तो अभी किस क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बड़े हैं आप?
1: सर मैं 20 साल का हूँ।
0: अच्छा, तो ये बचपन से ही आप नेत्रहीन हो गए थे?
1: जी।
0: अच्छा चलिए, देखिए अगर आंखें नहीं हैं लेकिन आप मन की आंखों से सब देख लेते हैं, कई लोग तो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं कि हम क्या बताएं, हम लोग दंग रह जाते हैं कभी सुनकर भी रेडियो से।
1: बिल्कुल
0: है ना। तो उनको पैसे गिनने में
1: जी बात कर रहे हैं ना सर?
0: हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ
1: जी। मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ सर, मैं आपके आवाज से जो सुनता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है सर।
0: तो कितने दिनों से मेरी आवाज सुन रहे थे कि आज आपकी बारी लगी? हाँ
1: मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ।
0: जैसे कुछ अंदाजा?
1: वही मतलब 2012-13 से।
0: अच्छा, तब फैजाबाद इसका नाम था, 2022 से अयोध्या हो गया।
1: हाँ बिल्कुल अयोध्या हो गया सर।
0: तो पहले कुछ पुराने प्रोग्रामों की आपको याद आती है जो अभी नहीं हो रहे हैं, कुछ याद है आपको?
1: जी पहले था पुराने में
0: एक प्रोग्राम बहुत ही बेस्ट होता था पुराने गानों का, पुरानी फिल्मों से। सुबह 7:30 बजे आता था, एक से एक बेहतरीन हम लोग गाने लगाते थे। अब तीनों सभा में हम लोग के पास एक भी पुराने गानों का प्रोग्राम नहीं है, इसकी कमी बहुत खलती हम लोग को। है ना,
1: तो सब नए नए गाने सुनते हैं ना सर?
0: नहीं वो तो बात सही है, लेकिन पुराने गानों को तो नहीं छोड़ सकते। 70-80-90 के दशक के जो गाने हैं वो देखिए हमेशा बजेंगे, हमेशा अच्छे लगेंगे आपको। है ना
1: जी, बहुत अच्छे लगते हैं पुराने गाने जब सुनते हैं ना तो याद आ जाता है।
0: तो आज आपको गाना हम कौन सा सुनाएं? देखिए मुझे फेडर कम करना पड़ा, आपके पास जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं जो चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने।
1: जी सर।
0: थोड़ा अपने आप को भी बचा के रखिएगा, है ना?
1: जी सर ओके।
0: दलाल फिल्म का गाना ठहरे हुए पानी में, जी निकाल लिया मैंने। अगली बार जब कॉल करेंगे ना थोड़ा दूर हटके कॉल करिएगा इनसे, ठीक है?
1: ठीक है तो
0: जी सुनिए गाना। आप भी नंबर लगाइए 73-76-80-40-90, आपसे भी बात हो जाएगी और आपके भी पसंद के गाने यहाँ से प्ले हो जाएंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है जब भी आपकी कॉल लगे तो रेडियो की आवाज़ कम रखिएगा या दूर रखिएगा, और कान में मोबाइल से ही सुनकर मेरी बातों का जवाब देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रोग्राम की अगर क्वालिटी अच्छी रही ना तो सब बढ़िया होता है। सुनिए गाना।

0: और अब जी हाँ, किसकी कॉल आ गई मेरे पास, आपको भी उनकी आवाज सुनवाते हैं। बताइए जी अपना नाम।
1: चंद्र प्रकाश यादव, विक्रमनगर बाजार बस्ती।
0: अच्छा जी, बस्ती में क्या करते हैं आप
1: जी? खेती बाड़ी काम ही करते हैं।
0: तो आजकल अभी देखिए बारिश तो शुरू नहीं हुई, लेकिन दिक्कत तो हो रही है ना धान की?
1: बारिश इधर उधर तो होती है, लेकिन हमारे विक्रमनगर में नहीं हुई बारिश अभी।
0: हाँ हाँ, ये अभी बारिश यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, फैजाबाद अयोध्या में भी। तो अब कुछ दिनों में मौसम बदलेगा और यहाँ पर बादल तो आने शुरू हो गए। जब बादल आएंगे तो पीछे पीछे बारिश भी आएगी।
1: मौसम इस समय भी अच्छा है, मौसम हवा चल रही है अच्छी।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, तो चलिए बढ़िया है, क्योंकि गर्मी भी इस साल बहुत पड़ी है और बारिश अब होनी ही चाहिए, है ना?
1: इस समय तो हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर।
0: तो गाना आपने एक फूल दो माली से बताया, औलाद वालों फूलो फलो।
1: औलाद वालों फूलो फलो,
0: वैसे ये पिक्चर भी बहुत ही बेहतरीन थी, आपने देखी थी कि नहीं?
1: जी जी जी।
0: चलिए,
1: जैसे एक फूल दो माली है तो एक ही वो है दो।
0: जी जी,
1: फिल्म भी बना।
0: चलिए चंद्र प्रकाश यादव जी, आपका गाना पहुंच गया, सुनिए। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: जी हाँ, हेलो, अयोध्या प्रोग्राम चल रहा है, लगातार आपकी कॉल्स भी रिसीव हो रही हैं। अब मेरे पास जी किसकी आवाज आने वाली है, नाम बताइए सर अपना।
1: दिल में लिए मोहब्बत की तमन्ना मैं दीदार करता हूँ, बरसों से इस भरी दुनिया में मैं आपका इंतजार करता हूँ।
0: अच्छा जी,
1: आदरणीय अमरजीत सिंह साहब को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: देखिए, हम आपके आदरणीय

0: नहीं, हम आपके मित्र कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, सखा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए क्योंकि आप ही सबसे बड़े तो आप हैं, हमारे आदरणीय आप हैं है ना तो क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया? विजय कुमार पांडे जी,
1: बहुत अच्छे हैं। मैं विजय पांडे, थाना पचपड़वा, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: आज बहुत दिनों के
1: बाद तहे दिल से शुक्रिया आपने मेरे काल को
0: कॉल तो देखिए सभी की रिसीव करनी है, और आपने बहुत दिनों के बाद याद किया या फिर नंबर नहीं लग पा रहा था?
1: नंबर नहीं लग पा रहा है जब आप आते हैं।
0: अच्छा, ये भी हो रहा है?
1: अविनाश जी से मैं पूछता हूँ, बताते हैं, तुरंत मैं लगाने की कोशिश करता हूँ मगर लगता नहीं है। पिछली बार लग गया था फिर कट गया।
0: ये होता है कभी कभी। देखिए इतनी लाइन फोन कॉल्स की इतनी भरमार रहती है ना, जिसकी कॉल अगर मैंने होल्ड भी किया हुआ है तो

0: नहीं, कॉल तो देखिए सभी की रिसीव करनी है, और आपने बहुत दिनों के बाद याद किया या फिर नंबर नहीं लग पा रहा था?
1: नंबर नहीं लग पा रहा है जब आप आते हैं।
0: अच्छा, ये भी हो रहा है।
1: अविनाश जी से मैं पूछता हूँ, बताते हैं, तुरंत मैं लगाने की कोशिश करता हूँ मगर लगता नहीं है। पिछली बार लग गया था फिर कट गया था।
0: ये होता है कभी कभी। देखिए इतनी लाइन फोन कॉल्स की इतनी भरमार रहती है ना, जिसकी कॉल अगर मैंने होल्ड भी किया हुआ है तो किसी का नेटवर्क अगर बहुत ज्यादा हाई है तो उसको डाउन करके उनका कॉल आ जाता है।
1: जी।
0: तो आज विजय कुमार जी गाना कौन सा आपको सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है राजकुमार, गीत के बोल हैं दिल ने पुकारा और हम चले आए। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुरी की आवाज में है। और ये गीत मैं जो तीन मित्रों का नाम लेना चाहूँगा।
0: बिल्कुल लीजिए सर।
1: त्रिपुरा से है अविनाश, अनु पांडे गोंडा से, साक्षी पांडे और ये है पूनम कानपुर से।
0: चलिए आपकी पसंद का गाना आपके पास पहुंच रहा है बलरामपुर में। सुनिए, कॉल के लिए शुक्रिया सर आपका।
1: जी धन्यवाद।

0: और अब अगले गाने की भी फरमाइश हमें मिल चुकी है, आइए देखें वो गाना सुनना कौन चाहता है। पहले उनसे बात कर लीजिए, बताइए अपना नाम।
1: जी सर, मेरा नाम सुमन मोहरी, त्रिपुरा से बोल रहे हो।
0: त्रिपुरा से आप पहुंच गए यहाँ पर, और क्या हाल चाल है त्रिपुरा वालों का? सब बढ़िया है ना?
1: जी जी सर, बहुत बढ़िया है। आपका वहाँ पे सब ठीक ठाक है?
0: हाँ बढ़िया। आज आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है। एक बार आवाज आ रही थी तो कट कट के आ रही थी।
1: सर, आपका आवाज रेडियो पर सुना है तो मैं सोचा कि आपसे बात कर लूं।
0: जी जी,
1: काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ।
0: जी, मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा आरजे अमरजीत सिंह के नाम से।
1: मैंने सर मैंने सब्सक्राइब करके रखा है मैंने।
0: जी जी, तो उस पे रिकॉर्डिंग 2-3 दिन के बाद आपको मिल जाती है इस प्रोग्राम की, है ना?
1: जी,
0: तो आज सुमन जी गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: गाना है सर नाम गुम जाएगा। हाँ? और गाने के बोले तेरे पलके जो उठी।
0: ओहो, बहुत बढ़िया गाना पसंद किया भाई आपने बाबुल सुप्रियो की आवाज में।
1: जी जी सर,
0: चलिए और कुछ कहना चाह रहे हैं? दिल में बातें आ रही हैं कुछ और?
1: हाँ सर, मैं और दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: बस लिस्ट लंबी नहीं कीजिएगा, बस 2-4 नाम लीजिएगा, बताइए।
1: जी जी जी जी, सिंगर से राकेश जी है, भगवान सिंह है बस, और अभी जो रेडियो जो सुन रहे हैं सबके डेडिकेट रहेगा साथ को आपको भी सर।
0: चलिए, आप इतनी दूर दूर से जब याद करते हैं ना।
1: हाँ सर, मैं जब भी आप आते हैं मैं कोशिश करता

0: जी जी, हर किसी की तमन्ना होती है जी। तो जब आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं ना, कॉल करते हैं, हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि पूछिए नहीं।
1: जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में।
0: चलिए सुनिए अपना गाना, त्रिपुरा में आपका गाना पहुंच गया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: जादू।
1: तो फिर वही काम हुआ जिसका डर था। ये होता रहता है, लाइनों से कोई जीत नहीं सकता, मैं आपको बता ही चुका हूँ। आशा राम जी की कॉल मेरे पास गोंडा से आई थी और उनको ड्रॉप करके कोई और आ गया उनकी जगह पे, देखें है कौन वो। जी नाम बताइए अपना।
2: हसीना बोल रहे इंदौर से।
1: हसीना भी मंसूरी इंदौर से। तो एक हमारे जो कॉलर
2: अभी विजय भैया ने बताया, बोले अमरजीत जी लगाओ।
1: वो तो बात सही है, लेकिन गोंडा से एक भाई साहब कॉल कर रहे थे, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई आपकी कॉल की वजह से। तो चलिए वो भी कोशिश करेंगे दोबारा, तो उनसे भी बात हो जाएगी। और बताइए क्या हाल चाल है, बढ़िया है आप?
2: बढ़िया सर।
1: अच्छा आपने रेडियो थोड़ा तेज खोल रखा है क्या, हैंड फ्री किया हुआ है कुछ, आवाज गूंज रही है?
2: रेडियो नहीं बज रहा सर,
1: थोड़ी सी आवाज गूंज रही है मुझको, गूंज के मिल रही है बस।
2: नहीं सर, लग रहा है जैसे पानी आ रहा है, बरस रहा है। आपके तो पानी आ रहा है क्या सर?
1: नहीं नहीं यहाँ पानी तो नहीं बरस रहा है।
2: हाँ, स्टूडियो में पानी कहाँ से आएगा सर?
1: वही तो। तो
2: लखनऊ में आपका नाम भी लिया था सर एक बार।
1: हाँ मैं लखनऊ कभी कभी कभी जब वक्त मिलता है तो प्रोग्राम सुनता भी हूँ, कॉल भी करता हूँ वहाँ पे कभी कभी।
2: अच्छा, मैंने आपका नाम लिया था कि ऐसे उद्घोषक है अयोध्या जी के, वो भी लेते आप, मतलब आप वहाँ पर लगाते लखनऊ में, ऐसे मतलब ऐसे उद्घोषक भी जो वहाँ पर फोन लगाते लखनऊ।
1: हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आप आरजेएस को पसंद करते हैं ना बात करने के लिए, तो हम आरजेएस भी एक दूसरे आरजे को भी पसंद करते हैं बात करने के लिए। तो आज हसीना भी मंसूरी जी को गाना कौन सा सुनवाया जाए?
2: सर फिल्म का नाम तेरी मेहरबानी और बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसका गाना सुना दीजिए, आग लगे तन मन में जब पानी बरसे।
1: तेरी मेहरबानिया का गाना पानी वाला, इसमें कौन सा बता रही हैं
2: आप? आग लगे तन मन में जब पानी बरसे।
1: वैसे तेरी मेहरबानिया के गाने और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आंचल उड़ाया मैंने ये भी गाना बहुत अच्छा है, दिल बेकरार था। चलिए जो आपने गाना पसंद किया है ना वो गाना मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो आज गाना सुनाएंगी नहीं आप हमको? चलिए आप रेडियो पर आ चुकी, पूरी बातें हो रही हैं, ऑन एयर जा रही हैं, सब सुन रहे हैं आपको।
2: अच्छा, तो फिल्म का नाम सर तेरी मेहरबानी है और गाने के बोले

0: जी हाँ, 10 बजने जा रहे हैं, आधा वक्त प्रोग्राम का बीतने वाला है और मेरे साथ इस वक्त कौन आ गया प्रोग्राम में, नाम बताइए जी अपना।
1: हमारा नाम रितिका है।
0: रितिका, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
1: हम फैजाबाद से कॉल कर रहे हैं।
0: फैजाबाद तो बहुत बड़ा है।
1: नाका
0: हनुमानगढ़ी से। ठीक है, बढ़िया है। तो आज कितने दिनों से आप ये प्रोग्राम सुन रही थी आकाशवाणी अयोध्या को?
1: सर, मैं अपने बचपन से ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, आपको बचपन से सुन रही हूँ। मेरी मम्मी आपकी आवाज़ बहुत पसंद करती है इसलिए, और मुझे नीना की दुनिया भी बहुत पसंद था, लेकिन वो शो अब बंद हो चुका है।
0: बहुत ही पुरानी कॉलर है फिर तो आप, जब फैजाबाद था तभी से आप सुन रही है। कुछ सन आपको याद है, किस सन से सुन रही थी?
1: जब से सर मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं रेडियो ही सुन रही हूँ। बच्ची थी तो समझ नहीं आता था, अब समझ में आने लगा है।
0: नहीं, कुछ अंदाजा है आपने 2006 से 7 से किस सन से?
1: ओह माय गॉड, आप तो मेरा जन्म बता रहे हैं।
0: मैं अंदाज लगा रहा था। तो आप फिर 2000
1: मैंने मतलब जब से मुझे लगता है 7-8 साल हुए मुझे अच्छे से सुनते हुए।
0: चलिए, तो आज गाना आपने कहो ना प्यार है का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहा है?
1: हाँ जी सर, कहो ना प्यार है टाइटल सॉन्ग सुनना। मुझे सर आपसे एक चीज पूछनी है
0: जी, बताइए।
1: मीना की दुनिया जो शो चलता था सर, उसमें जो मतलब मीना की दुनिया जो शो चलता था वो एक मीना नाम की लड़की पे चलता था, राइट?
0: ठीक है,
1: वो तो ग्रेजुएट।

0: भी नहीं थी, वो बच्ची थी, तो वो मतलब उस शो में कैसे पहुंची?
1: ऐसा था, वो एक सीरियल बना था आकाशवाणी लखनऊ का 10 एपिसोड का, वो अभी भी हमारी लाइब्रेरी में है, मीना की दुनिया। तो हम आपको दोबारा भी कभी सुनवा सकते हैं, वो तो वो कहानी बताई जाती है उसमें वैसे लिख कर, है ना, जैसे दूसरों को जो है उससे ज्ञान मिले कुछ। जी
0: सर, मुझे एक और चीज पूछनी है, एक और चीज
1: बताइए।
0: सर मैंने एक बार पहले भी कॉल किया, ये मेरा दूसरा कॉल है।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको रेडियो में जॉब चाहिए एज अ आरजे तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ऑडिशन दे सकते हैं और सिलेक्शन होता है, राइट। और उन्होंने कहा था कि बराबर रेडियो पे मतलब ये अनाउंसमेंट होती है कि आपको मतलब वहाँ पे आरजे की जरूरत है। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी मैं ग्रेजुएट तो हूँ, ग्रेजुएट होने में मेरे 3 साल बचे हैं, अगर मान लीजिए मेरे ग्रेजुएट होने से पहले ही अनाउंसमेंट होती है और आरजे पूरे हो जाते हैं, या तो फिर मेरे ग्रेजुएट होने के 7-8 साल बाद जरूरत पड़ती है आरजे की,
1: देखिए
0: सर क्या बेरोजगार रहूँ?
1: नहीं नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, आप जो है रेडियो कहीं भी सुनते रहे, अगर कहीं से भी जो है आरजेएस की वैकेंसी निकलती है आकाशवाणी किसी भी केंद्र से, तो आप अगर लखनऊ से, बनारस से, गोरखपुर से कहीं भी से भी पास कर लेंगे इलाहाबाद से ना, तो आप 6 महीने के बाद यहाँ ट्रांसफर करा सकती हैं, ये भी है।
0: मतलब मैं समझ नहीं
1: रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगी, पता लगा आप यहाँ से वैकेंसी नहीं निकल रही आकाशवाणी अयोध्या से, ठीक है ना, अगर किसी भी दूसरे केंद्र पर ऑडिशन होने वाला है, अगर आप वहां पास कर लेंगी इलाहाबाद, कानपुर, आकाशवाणी वाराणसी या गोरखपुर कहीं से भी, तो आप 6 महीने वहां काम करके आप अयोध्या में आके इस केंद्र पर बोल सकती हैं।
0: अच्छा सर, एक बात बताइए, मतलब जैसे मैं बराबर तो नहीं सुन पाती, कभी कभी पढ़ाई वढ़ाई बहुत ज्यादा रहती है सर, तो अच्छा एक बात बताइए, सीधे मैं मतलब जैसे रेडियो स्टेशन में अब ऐसे तो किसी को जाने नहीं देंगे सर, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना कि वो आपसे मिलते भी है रेडियो स्टेशन।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा
0: नहीं बुला लेंगे,
1: आप तो शहर में रहती हैं, आप कभी भी आइए, मंडे टू फ्राइडे 10 से 6 बजे ये खुला रहता है, बस छुट्टी उस दिन ना हो, और आप यहाँ पर आके अपना प्रोग्राम भी दे सकती हैं, 3 महीने में आपको एक बार बारी मिलेगी, कोई भी सोशल टॉक वगैरह आप दे सकती हैं, आपको उसका पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना
0: सर? ऐसे?
1: हाँ हाँ, आप आइए, आप किसी दिन आइए आकाशवाणी, ठीक है ना? अब देखिए काफी देर हो गई है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का भी, आपका गाना हम लगा रहे हैं।
0: ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय
1: बाय।

भाई ये गाना कंप्यूटर ने चालाकी कर दिया, गाना कुछ और चला दिया कंप्यूटर ने, और इसको ट्रैक पर लेकर आते हैं सही। जो गाना रितिका ने पसंद किया वही गाना तो चलना चाहिए ना, सुनिए।

0: और अब हेलो अयोध्या में किसकी बारी आ गई है उनकी भी आवाज लेकर आते हैं जी। बताइए अपना नाम। आप रेडियो पर आ गए, आपकी आवाज नहीं आ रही, वहां से बोलेंगे नहीं
1: जी।
0: अरे जी सर करते रहेंगे। आपने स्पीकर भी इतना तेज खोल रखा था, हैंड फ्री किया हुआ था, आप जब भी आते हैं इतना शोर क्यों रखते हैं रेडियो पर, ये बताइए। नहीं बोलेंगे, नाराज हो गए, हमने क्या कह दिया आपको ऐसा। अंश
1: जी
0: ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं पहले आप ये बताइए। तो छोटे नहीं है, इतना शर्माइए मत, डरिए मत इतना, है ना। गाना आपका मैंने निकाला हुआ है, आपकी कसम, गाने के बोल बताइए।
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं।
0: चलिए बढ़िया गाना है। तो आपने अयोध्या से किस जगह से कॉल किया है?
1: नाजीपुर।
0: नाजीपुर कहाँ पर? ये सुल्तानपुर रोड पर है क्या?
1: नो सर।
0: कहाँ पर है बताओ?
1: कुमारगंज रोड।
0: अच्छा कुमारगंज, वही बढ़िया रायबरेली रोड पर। तो देखिए अंश, आपकी कॉल बराबर लगती है, मैं कभी कभी आपका भी प्रोग्राम घर पे रहता हूँ तो सुनता हूँ, कभी कभी आपकी कॉल लग जाती है। जब भी आइए तो कम से कम वहाँ पे शोर कम रखिए अपने मोबाइल के आसपास, ठीक है ना
1: जी।
0: चलिए सुनिए गाना, कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: लेकिन जिसको आना इस प्रोग्राम में वो तो आएगा ना, और अभी तो वक्त है, अभी 20 मिनट का वक्त इस प्रोग्राम में है। 73-76-80-40-90 नंबर लगाकर जी पहुंच कौन गया जी, नाम बताइए अपना। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, आप किसी और से बात कर रही हैं कि मुझसे बात कर रही है, पहले ये बताइए।
1: सर हम बोल रहे हैं अन्नू रावत।
0: अन्नू रावत कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: सर बदन का प्रवाह से बोल रहे हैं।
0: आपकी तो कॉल लगातार अब यहाँ आने लगी, आपको आकाशवाणी अयोध्या के प्रोग्राम अच्छे लगने लगे?
1: नहीं सर आज लगाते ना, लेकिन हमने अभी देखा थोड़ी देर में कि आपकी आवाज आई, बस हमने तुरंत से रेडियो फोन लगाना शुरू किया।
0: तो ऐसा भी क्या है भाई, दूसरे भी आते हैं क्या, उनका प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगता किसी का, वो भी मेहनत करते हैं सारे?
1: नहीं सर ऐसी बात नहीं है।
0: चलिए होता है ऐसा,
1: दूसरी है।
0: हाँ चलिए, वो सब यही कहते हैं, क्योंकि मैं भी कई लोगों से आज मैंने ये सुना कि जब आप रहते हैं तभी हम कॉल लगाते हैं, तो जब हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। चलिए
1: सर तो बात कहनी,
0: बताइए जल्दी बताइए, क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का भी। अनु,
1: नए जमाने के दौर में हमारा खोटा सिक्का नहीं चलता। आप अयोध्या के किन गलियों में रहते हैं सर, हमारा फोन नहीं लगता।
0: क्या जबरदस्त शायरी बनाई आपने अपनी कलम से, ये कहीं से चुराई नहीं है, आपने खुद बनाई है, मुझे पता लग गया
1: जी सर।
0: कैसे लिख लेती हैं आप?

0: लोग ऐसे तुकबंदी हो जाती है।
1: सर अभी बैठे थे, हमने कहा आज फोन नहीं लगा तो यही बोलेंगे।
0: एक बार फिर से सुनवा दीजिए, फिर से बोलिए।
1: नए जमाने के दौर में हमारा खोटा सिक्का नहीं चलता। अयोध्या के किन जगह में रहते हैं सर, हमारा फोन नहीं लगता।
0: देखिए फोन लग गया
1: है ना? नहीं लगता, रोने लग जाते हैं।
0: वो तो देखिए फोन जो है ना, बस मैंने कहा ना कि लाइनों से कोई जीत नहीं सकता है, न जाने कितने लोगों की कॉल लगने के बाद भी कट जाती है, उस पर कोई दूसरा आ जाता है।
1: सर हम तो इतना कहते हैं जिस श्रोताओं से आपकी बात होती वो नसीब है सर।
0: चलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोकल है वो आके यहाँ मिल भी सकते हैं, हमसे बात
1: सर,
0: कर लें।
1: हम तो ये सोचे थे कि आप सोमवार को आए थे, पर आप सोमवार को ही आएंगे।
0: नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
1: नहीं किए थे।
0: जिस दिन भी ड्यूटी ऑफर होती है उस दिन हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो आपकी पसंद का गाना अनु, और कौन कौन सुन रहा है ये प्रोग्राम घर में आपके?
1: सर हमारे घर में सारे लोग सुन रहे हैं, सारे लोग आज बैठे हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए सबको मेरा नमस्ते बोलिएगा। और जवानी दीवानी फिल्म से बहुत ही बढ़िया गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं, ठीक है?
1: जी सर।
0: शुक्रिया।
1: जी सर, थैंक यू सर।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: हीट स्ट्रोक लू यानी तेज गर्मी जानलेवा हो सकती है। घर से निकलते समय सिर ढक कर रखें, इसके लिए कपड़े, हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
5: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
4: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
5: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
4: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त

0: मात्रा में पीने का पानी दें।
1: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर ना जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
0: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें। ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
2: बस थोड़ा सा वक्त और बचा है और इस बीच एक कॉल और जो है ड्रॉप हो गई है प्रशांत पटेल की। ये कॉल मैंने नहीं काटी है, या कॉल आपकी अपने आप ऑटोमेटिक ड्रॉप होके हमरान बेग की लग गई अम्बेडकर नगर से। जी आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया है आप?
3: जी सर मैं बहुत ठीक हूँ, आप सुनाइए आप ठीक है?
2: बस बढ़िया है। अम्बेडकर नगर से ही कॉल किया ना आपने?
3: जी सर अम्बेडकर नगर से किया कॉल।
2: तो क्या करते हैं वैसे वहाँ पर?
3: सर यहाँ पर घर पे ही रहते हैं।
2: तो मौसम कुछ अच्छा हुआ कि नहीं?
3: सर गर्मी बहुत पड़ रही है अभी।
2: नहीं अभी तो कोई बता रहा था कि हवा बड़ी ठंडी चल रही है बाहर। घरों में तो गर्मी है, कमरों में गर्मी है।
3: नहीं सर अभी इस वक्त में तो गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, हवा नहीं चल रही अभी।
2: हाँ बस देखिए ना, जैसे जैसे धरती पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं ना, तो बारिश भी आनी कम हो गई और तापमान भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना?
3: हाँ सही कह रहे हैं सर, ये परेशानी तो है।
2: तो हमरान बेग गाना आज आपको MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से कोई भी सुनवा दे।
3: जी सर कोई भी सुनवा दीजिए।
2: चलिए कॉल के लिए आपका शुक्रिया जी। आप ऐसे याद करते रहे, हम आपको गाने सुनवाते रहेंगे। ठीक है
3: जी, ठीक है सर,
2: शुक्रिया।

0: पता नहीं क्या हो रहा है प्रोग्राम में, मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी मशक्कत के बाद मेरे पास अर्जुन सोनकर की कॉल पहुंची थी, और काफी दिन के बाद उन्होंने कॉल लगाई थी, उनकी भी कॉल यहाँ पे ड्रॉप हो गई। अगर मुझको सुन रहे हैं वो, तो अभी भी हिम्मत नहीं हारे, अभी भी मेरे पास 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, आपकी कॉल यहाँ पर आ सकती है। लेकिन आपकी जगह पर आ कौन गया है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी नाम बताइए अपना।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आपकी आवाज आ गई रेडियो पर, नाम बोलिए।
1: श्री राम अवतार मिस्त्री।
0: राम
1: नाम प्रवा।
0: अच्छा जी, मिस्त्री हैं, तो कौन सा काम करते हैं आप?
1: गाड़ी बनाता हूँ सर।
0: गाड़ी?
1: हाँ, मोटरसाइकिल।
0: अच्छा, हम सुने दाढ़ी बनाते हैं।
1: गाड़ी बनाते हैं।
0: ठीक है भाई, मिस्त्री कई होते हैं ना, वॉशिंग मशीन के भी मिस्त्री होते हैं, टीवी के भी होते हैं, तो पूछना पड़ता है इसलिए। तो ये बताइए, गाना आप तुम तो सुनवाएंगे बढ़िया, और क्या हो रहा है आजकल?
1: साहब गर्मी बहुत पड़ रही, पानी नहीं बरस रहा है।
0: अच्छा,
1: तो
0: पानी
1: 26 जून हो गया।
0: हाँ देखिए, पानी हम सबके कहने पे नहीं बरसेगा, भगवान जब चाहेगा तभी बरसाएगा।
1: हाँ साहब,
0: क्योंकि भगवान को हम लोग हाँ, भगवान को हम सबने नाराज कर दिया बहुत ज्यादा, ये कलयुग है ना। तो वही चीज है, भगवान को खुश रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया मिलेगा।
1: हाँ साहब,
0: चलिए हम आपको

0: तो भाई जबरदस्त बोलते इस गाने में तो। और अब मेरे पास आ कौन गया जी, आपका भी स्वागत है, नाम बता दीजिए सबको अपना।
1: नमस्ते, मैं यदुनाथ यादव नाका फैजाबाद अयोध्या।
0: एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए, आपका कमरा खाली है कि आपने मुझे हैंड फ्री कर लिया फोन पर?
1: नहीं सर, हैंड फ्री नहीं किए हैं जो है, और वो जो है थोड़ा उधर का वीडियो बज रहा है और उसमें इसीलिए बताओ।
0: नहीं, हमें लग रहा है कि कमरा आपका खाली है इसलिए आवाज गूंज रही है।
1: नहीं सर, कमरा खाली नहीं है, बल्कि हम जो है इसमें पोर्च में है।
0: तो अगर रेडियो है तो रेडियो भी दूर कर दीजिए, थोड़ा दूसरों को सुनने दीजिए, थोड़ा कम सुनिए रेडियो ना, धीमी आवाज में। अब बताइए क्या हाल चाल है, बढ़िया है आप?
1: जी जी सर।
0: तो आज आपने गाना पसंद किया प्यासा सावन का, गाना तो बहुत ही बढ़िया है। और पुराने गाने ही आपको पसंद आते हैं, नए गाने नहीं आते हैं क्या?
1: नहीं सर, हमें पुराने भी आते हैं अच्छे, जो भी अच्छे हैं, नए भी आते हैं, पुराने भी।
0: हाँ,
1: जो भी अच्छे गाने हैं जिसमें सर सच्चाई हो, भावना अच्छी हो, वही गाने हमको अच्छे लगते।
0: चलिए,
1: पुराने नए
0: ठीक है। हमको एक बात बताइए, आप भी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं आकाशवाणी फैजाबाद के, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए, अभी तक हो नहीं पाया, वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम दिल के पास आ रहा है?
1: सर जो है हमको जो है चक्रव्यूह बहुत अच्छा लगता था।
0: चक्रव्यूह?
1: जी चक्रव्यूह।
0: मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जो हो रहे हैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जो प्रोग्राम यहाँ नहीं हो रहा है वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसे आप यहाँ पे लाना चाहते हैं?
1: सर हम जो है जैसे कि कोई प्रहसन हो, जैसे वीर भारती से 8 बजे आता है, उस प्रकार का हो कोई कार्यक्रम ज्यादा अच्छा लगता है।
0: तो अगर आप वहाँ पे कॉमेडी वाला सुन ही रहे हैं हवा महल, तो फिर वो तो आपको एक तो मिल ही रहा है ना, आप अभी उस जगह पे पहुंच नहीं पाए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यदुनाथ जी,
1: जी
0: है ना
1: सर, इस समय सही बात है, ज्यादा हम सुन नहीं पाते, केवल एक प्रोग्राम सुन पाते हैं क्योंकि बिजी ज्यादा रहे।
0: तो मैं तो नए प्रोग्रामों की आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो आप सुनते थे पहले वो उन दिनों की याद दिला रहा हूँ आपको, कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपको इस वक्त नहीं मिल पा रहा है।
1: अब उस समय खत लिखा जाता था सर जो है, और उस पर आधारित जो गाना बजता था वो बहुत अच्छा लगता था।
0: अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था, आपने सुना भी होगा, पुरानी फिल्मों से एक प्रोग्राम डेली होता था 7:30 बजे सुबह।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: आप
1: जी।
0: तो पुराने गानों कितने

0: बड़े शौकीन हैं, आपको तुरंत वही बात कहनी चाहिए थी, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, अगली बार याद करके आइएगा, बढ़िया, ठीक है ना
1: जी।
0: तो हम लोग भी होमवर्क करवाते हैं श्रोताओं से। चलिए सुनिए गाना, कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: इसी गाने पे जल्दी से एक छोटे बच्चे से बात करते हैं। बहुत ही तेज वो लड़का है, बहुत ही बढ़िया बातें करता है। नाम बताइए जी अपना।
1: सर आदित्य।
0: आदित्य, आपकी आवाज भी बड़ी ही प्यारी आती है रेडियो से, और आप करते क्या है, कितने बड़े हैं आप?
1: आठ साल के हैं
0: और सब बढ़िया। हाँ ये आपने बताया था, मुझे याद आ रहा था। देखिए आपको दिखता नहीं है लेकिन तब भी आप बातें इतनी बढ़िया बढ़िया करते हैं, दूसरों का दिल जीत लेते हैं। आपकी आवाज भी बड़ी मीठी है, क्या खाते हैं? मीठा मीठा खाना पसंद है कि नहीं? चलिए, और रहते कहाँ पे हैं आप अयोध्या फैजाबाद में? बड़ी देवकाली के पास रहते हैं। अरे कोनो गांव का नाम बताओ, हमको समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा शहर है।
1: सर बड़ी बुझानिया।
0: बड़ी बुझानिया पता नहीं कहां पर है, किस रोड पर है, कोई बढ़िया रोड बताओ। चलो फिर कभी पूछेंगे आपसे। तो आपका शुक्रिया जी आदित्य, फिर आइएगा। तो ये था आज का प्रोग्राम हेलो अयोध्या कंट्रोल रूम से। आज मेरे साथ थे इंजीनियर अश्विनी शुक्ला और राजकुमार मौर्य। तो अपने रेडियो मित्र अमरजीत को अब दीजिए इजाजत हेलो अयोध्या प्रोग्राम से। आप सब अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या, जिसे आपने आकाशवाणी अयोध्या से ही सुना FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। रात के 10:30 होने जा रहे हैं। अब से लेकर 11 बजे तक आपको हम विविध भारती मुंबई से सुनवाएंगे ढलती जाए रात प्रोग्राम में पुराने गाने, बस कुछ ही देर के बाद।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

जाए रात प्रोग्राम में ये पुराने गाने आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 6:05 से। यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको समाचार सुनवाए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त हो जाएगी। फिलहाल समाचारों का कुछ पल इंतजार कर लीजिए।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।